नमस्कार, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:54 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रातःकालीन प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ प्रारंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिल्मे चैनल को। सुबह के 8:57 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

थोड़ी देर बाद 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 9:10 पर होगा रामचरितमानस गान। 9:20 पर आप सुनेंगे वंदना। 9:40 पर आप सुन पाएंगे झलकी, हमने टीवी खरीदा। दस बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के, और 10:30 आप लुत्फ उठा पाएंगे गाने नए तराने नए का। सुबह 10:55 से आप सुनेंगे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से संवाद, जिसे पहले आप हिंदी में उसके बाद संस्कृत में अनुवाद सुनेंगे। 12:05 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। 5:00 आप सुनेंगे युवावाणी कार्यक्रम। 5:30 प्रसारित होगा बालवाड़ी। 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 7:00 आप सुनेंगे खेतीबाड़ी कार्यक्रम। 7:30 से आप सुनेंगे ICC वीमेन्स T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में भारत और थाईलैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये थे हमारे आज के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9:00 रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। लघु उद्योग दिवस आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्यमियों को आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की हलचल तेज, अब तक 13,000 से ज्यादा नामजदगी के पर्चे भरे गए और राष्ट्रीय

0: परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। आज लघु उद्योग दिवस है। ये दिन देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन उनके 3 दिवसीय दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम सेतु योजना के तहत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में श्री सिंह लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने वाले सभी छोटे बड़े व्यवसायियों को लघु उद्योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने कहा कि अपने हुनर, मेहनत और नवाचार से स्थानीय उत्पादों को पहचान देने वाले ये उद्यमी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव हैं। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है, जबकि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल सहायता की सराहना की है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10,245 वार्डों के लिए अब तक करीब 13,000 से अधिक नामांकन दाखिल किए गए हैं। कल नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिन है। इसके बाद ही कुल प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो सकेगी। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। हालांकि प्रदेश में अभी भी 5 निकाय ऐसे हैं जहां नामांकन का खाता नहीं खुला है। इधर सभी दलों के प्रत्याशी अपने दल बल के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ जनसंपर्क भी तेज हो गया है। व्यक्तिगत मेल मिलाप के साथ और सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार किया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा दावेदार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी भी मुकाबलों को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना रहे हैं। गौरतलब है कि नामांकन पत्रों की समीक्षा 1 सितंबर को होगी। 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। भरतपुर में आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकालकर स्वस्थ जीवन शैली जीने के साथ ही मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्भीक मतदान का संदेश दिया गया। पाली में निर्वाचन विभाग की ओर से रंगोली, मानना, रैलियां, नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए मतदान का संदेश दिया जा रहा है। समाचार कक्ष से डॉक्टर ज्योति पारीक।
0: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत जारी होने वाले चिकित्सकीय परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन पर अब चिकित्सक खुद अपने हस्ताक्षर और मोहर लगाकर सत्यापित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कल स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। RGHS से संबद्ध सभी अस्पतालों को इन निर्देशों की तत्काल और सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि नए निर्देशों के अनुसार हर RGHS पर्ची को संबंधित एम्पैनल्ड चिकित्सक द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचना, सत्यापित करना और प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। नए निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अन्य व्यक्ति संबंधित चिकित्सक की ओर से पर्ची पर हस्ताक्षर या प्रमाणीकरण नहीं कर सकेगा। RGHS की परियोजना अधिकारी डॉ. निधि पटेल ने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन तैयार करने, क्लिनिकल विवरण दर्ज करने अथवा डेटा एंट्री में संस्थागत नियमों के अनुसार सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन रोगी के क्लिनिकल निष्कर्ष, निदान, निर्धारित दवाइयों, जांचों तथा उपचार की अंतिम जिम्मेदारी संबंधित एम्पैनल्ड चिकित्सक की ही होगी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट PG 2026 परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई जो 12:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए जयपुर सहित 12 जिलों में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित है। परीक्षा के सुचारू, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था, सुगम यातायात तथा परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। पाली में रामसरिया गांव के पास आज एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा बेकाबू कार के मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारने से हुआ। पुलिस के अनुसार ये कार यात्रियों को लेकर रामदेवरा जा रही थी। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग आज से 5 सितंबर तक अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में मंदिर मार्ग पर रखरखाव और आवश्यक मरम्मत का काम किया जाना प्रस्तावित है। वन विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 5 सितंबर तक इस मार्ग का उपयोग न करें और विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। लघु उद्योग दिवस आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्यमियों को आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की हलचल तेज। अब तक 13,000 से ज्यादा नामजदगी के पर्चे भरे गए और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट PG परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस का।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं रविंद्र जैन और साथियों की आवाज में गाए इस भक्ति गीत के साथ।

नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से। अगली प्रस्तुति हरिओम शरण की आवाज में।

0: हरि ओम शरण की आवाज में गाई इस भक्ति रचना के साथ हमारा आज का वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं झलकी। हमने टीवी खरीदा।
1: गुप्ता जी अंदर हैं क्या?
2: कौन है भाई?
1: अरे मैं हूँ मलकानी गुप्ता जी। मैं
2: आइए आइए मलकानी साहब, कहिए सवेरे सवेरे कैसे तकलीफ की?
1: अरे बड़ी भाई साहब, आज संडे है नी, तो मिसेज ने कहा आप गुप्ता जी से पहले जाकर इनविटेशन मांग लो।
2: इनविटेशन? कैसा इनविटेशन?
1: बड़ी आपने टीवी खरीदा है नी, और आज संडे है, अब पूरी पिक्चर चलेगी नी तो हम लोग आ जाए नी, तो बड़ी आप हमको इनवाइट करो नी
2: क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम, आप जरूर तशरीफ लाए और भाभी जी को भी लेकर आए
1: शुक्रिया भाई साहब, तो मैं चलूं नी, शाम को आऊंगा।
2: जी हाँ।

0: जरूर।
1: ए जी, कौन आया था सुबह सुबह?
0: अरे वो मेरे साथ मलकानी काम करता है ना, वही आया था। कह रहा था, वाह भाई साहब, आपने बहुत ही नेक काम किया जो टीवी खरीद लिया। आज सारे मोहल्ले में आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। कह रहा था, हम शाम को टीवी देखने आएंगे।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो आएगा ही। साथ में सारे मोहल्ले वालों को भी दावतनामा भेज दो। टीवी क्या खरीद लिया, सर दर्द मोल ले लिया।
0: अरे ये क्या कह रही हो, सिर दर्द तो बेचारे पड़ोसियों का है, जो रात के 11 बजे तक छत पर खड़े खड़े टीवी देखने को चक्कर लगाते रहते हैं, और हम यहाँ ठाट से सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं। आहा, भला हो टीवी बनाने वालों का, क्या लाजवाब चीज बनाई है। घर बैठे दुनिया की सैर कर लो।
1: हाँ, और घर का पूरा सत्यानाश, ना कोई पढ़ता है ना लिखता है। किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर की कोई सफाई ही नहीं होती, और उस पर आने जाने वालों के लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, घर एक अखाड़ा बन गया है। कोई चीज ठिकाने पर नहीं मिलती। बच्चों की तो खैर बात ही छोड़ो, तुम जैसे निठल्ले बड़े बूढ़े भी शाम 6 बजे जो अंदर जाते हो, तो रात के 11 बजे तक बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हो।
0: देखो देखो भाई, अब जो हमें निठल्ला बूढ़ा कहा, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम ही सोचो, टीवी हमने खरीदा है, हम ही इसे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। माल हमारा और गुलछर्रे उड़ाए पड़ोसी, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
1: लेकिन जब बच्चों का प्रोग्राम आता है, तब तो बाहर आ जाया करो।
0: भाई वो क्या है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द बच्चे समझ नहीं पाते, तो उनको समझाने के लिए बैठना पड़ता है।
1: और वो जो महिलाओं का कार्यक्रम चलता है, तब क्यों बैठा करते हैं?
0: वो क्या है कि, हाँ भाई, ये देखते हैं कि आज की महिला ने कहां तक तरक्की कर ली है। अरे आज महिला एवरेस्ट चोटी तक जा पहुंची है, और सुना है अंतरिक्ष में भी तुम्हारा राज होने वाला है।
1: बातें बनाना तो तुमको खूब आता है। अच्छा ये बताओ, परसों शर्मा जी से क्या कह रहे थे?
0: शर्मा जी से क्या कह रहा था?
1: बताऊं तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था, यार शर्मा जी, ये जो कार्यक्रम पढ़कर सुनाती है, वो बड़ी खूबसूरत है।
0: वो क्या है कि, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। इस पर तुम इतना नाराज क्यों होती हो?
1: मैं खूब समझती हूँ, टीवी वाली खूबसूरत लगती है और मैं बदसूरत लगती हूँ। ठीक है, मेरा फैसला भी सुन लो, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी।
0: सुनो तो सही, चली गई। भला हो इन औरतों की अक्ल का, टीवी पर कोई सुंदर चेहरा दिखाई पड़े तो उसकी तारीफ से भी इन्हें जलन होती है। वहम की दवा तो हकीम के पास भी नहीं। उस दिन फिल्म स्टार की खूबसूरती की तारीफ क्या कर दी, घर भर में तूफान खड़ा कर दिया।
2: सारी रात घरवाली के पांव दबाता रहा, पर वह नहीं मानी सो नहीं ही मानी।
0: भगवान खैर करे, ये टीवी कोई नया लंका कांड ना करा दे।
3: पापा पापा, आज मेरे सभी दोस्त टीवी देखने आएंगे।
0: क्यों, क्या इस शहर में सिर्फ हमने ही टीवी खरीदा है?
3: नहीं पापा, ये बात नहीं है, वो तो एक तरह का रिगार्ड होता है। पापा, हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो लोग देखकर तारीफ भी तो करते हैं।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, आने दो आने दो।
3: और पापा, रानी के भी सभी फ्रेंड्स आ रही है।
0: अच्छा, वे भी आ रही हैं, बहुत अच्छे। अब तुम्हारी मम्मी से भी पूछ लो, उनके मायके से भी कोई आ रहा है या नहीं।
1: कोई क्या, सभी लोग आ रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, पप्पू पापा से पैसे लेकर बाजार चले जाओ।
0: क्यों, बाजार क्यों?
1: मेरे मायके वाले पहली बार मेरे घर आ रहे हैं, कोई बिना खाए पिए थोड़े ही जाएंगे।
0: लेकिन तुम्हारे मायके वाले क्या तुम्हारे घर का, यानी कि बेटी के घर का खा लेंगे क्या?
1: क्यों नहीं खाएंगे जनाब, ये 20वीं सदी है, पुरानी परंपराओं को अब कोई नहीं मानता। ज्यादा से ज्यादा खाने के बदले 10-5 रुपये पकड़ा देंगे, और क्या।
2: अच्छे मायके वाले हैं तुम्हारे।
1: देखो जी, मेरे मायके वालों को कोसने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें 7 बार गर्ज हो तो बुलवाना, कौन निकम्मे बैठे हैं जो आएंगे, वो तो मेरी वजह से आ रहे हैं।
0: तुम्हारी वजह से नहीं, टीवी की वजह से आ रहे हैं।
2: तुम्हें देखते देखते तो मुझे टीबी हो गई है।
1: क्या
0: वो क्या है? मेरा मतलब है ठीक है, आने दो आने दो।
4: पापा पापा, अभी मुझे रास्ते में मुकुट अंकल मिले थे, कह रहे थे पापा से कहना कि आज हम सभी यार दोस्त टीवी देखने आ रहे हैं, घर पर ही रहना, कहीं बाहर ना जाना।
0: अच्छा, मुकुट मिला था, मेरे सभी यार दोस्त आ रहे हैं, भाई वाह, मजा आ गया, कई बरस हो गए उनसे मिले, चलो इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। भाई इस टीवी ने आज स्नेह मिलन का आयोजन करवा दिया।
1: हाँ, और यह स्नेह मिलन आज ही होगा, लेकिन इसके लिए मुद्रा मिलन का भी तो आयोजन करो। इतने सारे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था में घर के बजट का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। पप्पू, हिसाब जोड़कर बताओ कुल कितना खर्चा हो जाएगा और कुल मिलाकर कितने लोग हो जाएंगे?
0: अरे भाई 150 खर्च भी हो गए तो क्या, आखिर मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है कि नहीं?
1: आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा श्रीमान जी।
0: अरे भाई सभी लोगों को खाना थोड़ा खिलाना है, ऐसा करना चाय और नमकीन से सबको निपटा देना।
1: आहा, चाय और नमकीन से निपटा देना, मेरे मायके वालों को भूखा थोड़े ही जाने दूंगी, भैया और भाभी तो नॉनवेज खाएंगे, बाकी लोग हलवा पूरी।
2: क्या हलवा पूरी?
3: और पापा, मैं तो मेरे दोस्तों को डिनर पर इनवाइट कराया हूँ।
0: क्या
4: फिर पापा, मेरी सहेलियाँ कोई भूखे थोड़ी ना जाएगी।
2: अरे बापरे,
1: और आप अपने दोस्तों को भूखा ही भेज देंगे, शर्म नहीं आएगी, दोस्तों में नाक नहीं कटेगी?
0: ओहो, नाक नहीं कटेगी, बनिए का हिसाब करते वक्त कौन सी बच जाएगी, वो लाला पैसों के लिए भरे बाजार में मेरी पगड़ी नहीं उछाल देगा।
3: पापा मम्मी सुन लो, सभी कुल मिलाकर 140 आदमियों का खाना बनेगा, इस पर 1000 रुपए का खर्च होगा।
2: मर गए, अरे ये टीवी देखने का प्रोग्राम बना रहे हो कि मेरी लुटिया डुबोने का?
1: लुटिया काहे डूबेगी, सभी लोग घर के ही तो हैं, बाहर का कौन है, फिर जब टीवी खरीदा है तो लोग देखने आएंगे ही।
2: देखो तुम मेरा मुंडन संस्कार मत करो, इतने खर्चे में तो मैंने शादी की थी।
1: तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी दूसरी शादी पर ही तो खर्च हो रहा है।
2: दूसरी शादी? क्यों बच्चों के सामने मेरा मजाक बना रही हो?
1: मजाक नहीं बना रही, सच्ची में ये आपकी दूसरी शादी नहीं तो क्या है, टीवी नहीं खरीदी, सौत ले आए हैं मेरी।
2: सौत?
1: और नहीं तो क्या, 6-6 घंटे जिसके साथ बैठे रहते हो वो मेरी सौत नहीं तो और क्या है, इतना वक्त आपने मेरे साथ कभी बिताया था, है याद तुम्हें?
0: टीवी को अपनी सौतन बतला रही हो, भाई वाह, महामाया तुम्हारा भी जवाब नहीं। पप्पू बाहर बोर्ड लगा दो, हमने टीवी नहीं खरीदी है, और पापा

अभी आप सुन रहे थे झलकी, हमने टीवी खरीदा। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आइए अब सुनते हैं गजल्स। सबसे पहले लीजिए ये पहली प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं गाने पुराने ज़माने के। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कुदरत का ये नगमा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अगला गीत आपके लिए लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में। फिल्म का नाम है हीरो। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का अगला गीत आपके लिए फिल्म बेताब से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत से सजाया इस गीत को आरडी बर्मन ने।

गाने पुराने जमाने के इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गाना आपके लिए फिल्म मंजिल मंजिल से आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए फिल्म समुंदर से, आवाज किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी परमन का।

इसी गीत के साथ गाने पुराने जमाने के प्रोग्राम यही खत्म होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। दिन के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गाने नए तराने नए। सबसे पहले आपके लिए आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म रुस्तम का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से गाने नए तराने नए। अगला गीत आपके लिए फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से आवाज़ पलक मुच्छल की है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को और आप लुत्फ उठा रहे हैं फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का जिसका नाम है गाने नए तराने नए। अगला गीत आपके लिए अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में फिल्म एयरलिफ्ट से।

तू ही मेरी सुबह है, तू ही मेरी ढलती शाम है, मेरी हर एक सांस अब सिर्फ तेरे नाम है। श्रोताओं, अगला गीत आपके लिए फिल्म सनम रे से, आवाजें अरिजीत सिंह, मिथुन और अनिरुद्ध भोला की।

महफिल में तेरी हम न रहें तो क्या मलाल होगा, तेरी खुशी की दुआ मांग कर ये दिल भी खुशहाल होगा। लीजिए सुनिए प्रीतम अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का ये प्यारा सा नगमा।

0: इस गीत के साथ गाने नए तराने नए कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। सुबह के 10:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे मन की बात। इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से संवाद सुनेंगे, जो पहले हिंदी में तत्पश्चात संस्कृत में अनुवाद प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इंसान के सामने आता है, उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो, तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
3: और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम
4: पर दादी आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
8: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक तो

0: भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या? और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
0: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
1: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
0: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए, भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत

छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं।

कामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है धोडरो कुसुम। कुछ
कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके
टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा

0: और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का चैनल है और आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: अभी आप सुन रहे थे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से संवाद, जिसे आपने पहले हिंदी में सुना, तत्पश्चात संस्कृत में उसका अनुवाद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:11 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

मैंने प्यार किया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। असद भोपाली के बोल थे, राम लक्ष्मण का संगीत था। आइए अब सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनो जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का जिरमी चैनल। दिन का 1 बज रहा है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की सराहना की जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। उन्होंने नशा मुक्त भारत के लिए पावरफुल स्लोगन बनाने, युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का संदेश हो और विद्यार्थियों तथा थिएटर ग्रुप से ऐसे शॉर्ट प्ले बनाने की अपील की जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी सुझाया गया हो।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: प्रधानमंत्री ने अगस्त के महीने में राष्ट्र प्रेम की बयार का जिक्र करते हुए कहा कि ये समय भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और हर घर तिरंगा अभियान भावना से देशवासियों को गर्व से भर देता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से ये साल और भी विशेष बन गया है। श्री मोदी ने सूर्यपथ तिरंगा के जरिए तिरंगे की अनोखी यात्रा को गौरवशाली पल बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित महिलाओं की बात करते हुए कहा कि आज देश में 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि

0: से महिलाओं को न केवल ताकत मिल रही है बल्कि वे देश की आर्थिक समृद्धि में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का नाम है मिशन शक्ति सेट और इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्वच्छता को संकल्प बनाने, कृषि क्षेत्र में नवाचारों को महत्व देने के साथ ही अपने वोकल से लोकल के आग्रह को एक बार फिर दोहराया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ये कार्यक्रम ब्रिक्स के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस का विशेष संस्करण था। डॉक्टर मांडविया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि साइकिलिंग व्यायाम का एक उत्कृष्ट रूप है। डॉक्टर मांडविया ने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां फिलहाल थम गई हैं। बारिश का दौर रुकने से कल अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंच गया। वहीं अलवर, टोंक, जोधपुर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले महीने मॉनसून फिर सक्रिय हो सकता है। विभाग ने 2 सितंबर को 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुनेंगे।
2: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए। सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। बहुत मुश्किल है होशियारी सीखना भाई, लेकिन बहुत सारे लोग पारंगत होते हैं इस गुण में। जो आज के ज़माने में सीख ले होशियारी, वो समझ लीजिए कामयाब भी है। वैसे बहुत सारे श्रोता, क्या सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है कि आज मामला क्या है? हमने इबारत में एक लाइन लिखी भी थी कि आज तो कुछ खास बात है। क्या खास है, चलिए हम भी आपको बता ही देते हैं, याद ही दिला देते हैं। गीतकार शैलेंद्र की जयंती है आज, 103 बरस पूरे हुए। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं की याद को समर्पित है। आज की जो इबारत है, उस इबारत से आपको चुनने हैं शब्द और कुछ गाने जो शैलेंद्र के लिखे हुए गाने हैं। तो आप वो गाने चुनिए और साथ में ये भी बताइए कि शैलेंद्र की गीतों की कौन सी वानगी आपको प्रभावित करती है। दर्शन वाले गीत, आंचलिक गीत, मतलब जिसमें ग्रामीण परिवेश है, रोमांटिक गीत, या फिर स्त्री मन की पीड़ा जिसमें निहित है वो गीत। आप अपनी पसंद बताते रहिए और गाने लिखते रहिए, साथ में हमारी पहेलियां भी पूछते रहिए। आपके चुने हुए गाने हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कुछ गाने हम जब अपनी ओर से सुनाएंगे तो देखिएगा कि वो गाने आपके दिल के करीब हैं या नहीं। एक श्रोता ने अभी अभी लिखा है, शैलेंद्र ने बेहद सरल शब्दों में जीवन के कड़वे सच को बयां किया है। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी पंक्ति इंसान की मासूमियत और उसकी लाचारी को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। संगीत और गायकी शंकर जयकिशन का है, मुकेश की दर्द भरी आवाज मन को छूती है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है और ये भी हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार, तो आप ये भी हमें बता सकते हैं। एक हमारी श्रोता है, नियमित श्रोता, जिन्होंने लिखा है कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, ये केवल गीत की पंक्तियां ही नहीं है, ये तो उनकी सरलता, अपनी बात को सहज रूप में लोगों के सामने रखने का अपूर्व कौशल है। उनके गीतों में एक सीख है, कर्तव्य बोध और नैतिक मापदंड की घुट्टी। सभी कुछ क्या बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कबीर सदियों पहले कह गए थे, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, जैसी पंक्तियां कबीर की ही वाणी की अनुगूंज है। मगर बावजूद इसके शैलेंद्र कबीर नहीं थे, बल्कि कबीर उनमें समाहित थे। क्या बात लिखी भाई, शैलेंद्र बड़े जीवट वाले इंसान थे। सपने देखना और उन्हें सच करना उनको आता था, ये उनके रंग बिरंगे सपने ही थे जो सैकड़ों की तादाद में गीतों की शक्ल में हवाओं में आज भी गूंज रहे हैं और इस समय विविध भारती से गूंज रहे हैं आपके रेडियो सेट तक। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं, असली नकली फिल्म से। आपको पूछना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में संगीतकार का नाम भी पूछना है। अब गाने हमें सुझाते चलिए ताकि हम वही गाना सुनवा सकें जो आप सुनना चाहते हैं।

असली नकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। साधना और देव आनंद इस फिल्म में हीरो हीरोइन। संगीतकार का नाम भी हमारे श्रोताओं ने बताया है, शंकर जयकिशन। फिल्म थी असली नकली। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि महान गीतकार शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने रचनाकारों में से हैं जिन्होंने फिल्मों में लोक संस्कृति आंचलिकता मतलब मिट्टी की सूंधी महक को बेहद सहजता से पिरोया। मूल रूप से बिहार के आरा जिले से ताल्लुक रखने के कारण ग्रामीण जीवन, लोक भाषा और आंचलिकता उनके रग रग में बसी है। शैलेंद्र ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी की शुरुआती फिल्मों के लिए भी कई ऐतिहासिक गीत लिखे, जैसे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े बो। जब भी भोजपुरी भाषा की बात चलती है तो ये गीत जरूर याद किया जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें तो उनके भोजपुरी गीत का रंग बहुत पसंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें जो ग्रामीण अंचल दिखाई पड़ता है जिन गीतों में, वो हमें बहुत पसंद आता है। और अभी जो गाना हमने सुनवाया, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, इसमें भी एक स्त्री मन की बात थी। और शैलेंद्र की पूरी गीत यात्रा में हमें बहुत सारे ऐसे गाने मिल जाते हैं जिनमें उन्होंने स्त्री की बहुत ही भावनाओं को समर्पित किया, भावनाओं को उकेरा है अपने गाने में। उनके जीवन के अलग अलग मोड़ों पर दिल में उठते तूफान को गीतों में उन्होंने पिरोया है और वो जो भाव है उनके अंतर मन के, उनके भाव उस गीत में उकेरे गए हैं और वो गीत आपके दिल में उतर जाते हैं। जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा का वो गीत याद आता है जो अक्सर आप सुना करते हैं और आज भी बहुत सारे श्रोताओं ने उस गाने का जिक्र किया है। तो अब सुनिए अनुराधा फिल्म का वही गाना लता मंगेशकर की आवाज में। लेकिन आपसे एक पहेली हम पूछ रहे हैं, पहेली वो ये है कि आप बूझिए किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है और कैसा दर्द है उस हीरोइन के चेहरे पर और उसके मन में। बहुत अनकहा दर्द है इस फिल्म में। बूझिए जरा कौन है हीरोइन और हीरो।

अनुराधा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, ये बताने की जरूरत कहाँ है, लेकिन फिर भी बता रहे, रविशंकर का संगीत था। और इसमें हमने आपसे पहली बूझी थी हीरो हीरोइन का नाम, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म अनुराधा का ये गीत बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत है, एक स्त्री के अंदर के दुख को बहुत अच्छा बयां करते हैं। इसमें रविशंकर का संगीत था और लीला नायडू बलराज साहनी इसके हीरो हीरोइन थे, और अभी भट्टाचार्य का भी एक महत्वपूर्ण रोल था। हाँ, बाद में वो आते हैं और जब लीला नायडू से एक अलग स्त्री के रूप में परिवर्तित होने का आग्रह भी करते हैं और एक गाना और वो सुनने का आग्रह करते हैं जब लीला नायडू पर्दे पर गाती हैं, तो वो कौन सा गाना है, अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइए हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि 1957 में मुसाफिर और 1959 में अनाड़ी के बाद अनुराधा ऋषिकेश मुखर्जी की निर्देशित तीसरी फिल्म है। प्रेम फिर विवाह और विवाह के बाद पति के लिए पत्नी का अपना करियर, अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग, परिणाम स्वरूप मन में उपजी उलझन और फिर फैसला इस फिल्म का थीम है। पर क्या महिला अपने फैसले को तर्क और ठोस मानसिक धरातल पर ले जाती है, इस पर एक पहेली हमने पूछी है आपसे, जरा आप भी सुनिए और उस पहेली का जवाब दीजिए। जब लीला नायडू अनुराधा फिल्म में एक और गाना गाती है जिसमें उसकी तड़प है और उसके मन की पीड़ा है, जरा वो गाना आप बता सकते हैं तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पिंजरा में बंद भइल हाय राम गीत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि शैलेंद्र एक मन भावनिक और भाविक चरित्र गीतकार, जिनके सरल शब्दों में दुनियादारी, इंसानियत, सच्चाई की गहरी सोच दिखाई देती है। एक गाना है करमुआ बैरी हो गए हमार, या मेरे साजन है उस पार, जैसे गीत भावना की गहराई दिखाई देती है। और भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं और बजाने के लिए अनुरोध किया है। भाई, हम तो आप सभी से कह रहे हैं कि आप गाने याद करते रहिए, अपनी यादों के गलियारों में जाइए, खंगालिए अपनी यादें, और गानों से जुड़ी हुई कोई खास बात है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे श्रोता अभी भी लिखे जा रहे हैं, बलराज साहनी, लीला नायडू और अनुराधा, लीला नायडू, हीरो बलराज साहनी। और एक श्रोता लिख रहे हैं बरसात में हमसे मिले तुम सजन, ये वाला गाना भी सुनवाइएगा। और शैलेंद्र के गीतों से सजा जो प्रोग्राम चल रहा है ये तो बहुत ही सुरीला हो गया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम यहाँ प्रसारण आपके मुंबई से हो रहा है और मैं यहाँ नोएडा में सीधे दिल्ली से इस कार्यक्रम को सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात भी सुन पा रहा हूं, लेकिन इसमें बीच में विज्ञापन आ जाता है तो नहीं सुन पाते। इसके लिए एक सलाह है कि आप मोबाइल के ऐप पर जाकर ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। चलिए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म आम्रपाली से। आपको पूछना है फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम।

आम्रपाली फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है गाना। सुनील दत्त और वैजयंती माला होती हैं। यहाँ फिर एक बार स्त्री मन की पीड़ा समाहित है इस गाने में भी, इंतजार है और एक दर्द है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र उस फकीर का नाम है जिसने वेल्डिंग की चिंगारियों से अपनी कलम बनाई और आम आदमी के बहते आंसुओं को गीतों में पिरो दिया। भूख, गरीबी, रेलवे वर्कशॉप की धूल में तपकर निकला ये हीरा जब राज कपूर के साथ मिला तो हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह ही बदल गई। आवारा हूं से लेकर सजन रे झूठ मत बोलो तक उन्होंने कागज पर सिर्फ शब्द नहीं उकेरे बल्कि इंसानियत का सबसे सच्चा दर्द उड़ेल दिया। वे दिल से लिखते थे इसलिए उनकी लिखी हर एक पंक्ति में आम इंसान का दिल धड़कता है, सरल, बेहद खूबसूरत और हमेशा हमेशा के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र फिल्म असली नकली में अपार प्रेम की जो स्त्री मन की पीड़ा उकेरते हैं वहीं पर तेरा मेरा प्यार अमर फिर मुझको क्यों लगता है डर ये बात लिखते हैं। वहीं पर फिल्म रात और दिन के एक गीत में शैलेंद्र जीवन की एक अजीब उलझन में फंसी एक स्त्री के भटकाव को गीत में पिरो दिया है। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल। हिंदी सिनेमा में स्त्री मन के कुछ सबसे नाजुक गीत शैलेंद्र की कलम से निकले हैं। महिला किरदारों की तड़प, उनकी तमन्नाओं, उनके ख्वाबों के नगमे, ये बात शैलेंद्र को एक विशिष्ट गीतकार बना देती है। गाइड में विवाह से परे अपने प्रेम को स्वीकार करती एक बेबाक स्त्री की पुकार है, मैं हूं गुबार या तूफान हूं, फिल्म गाइड की बात। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाइड फिल्म के गानों की बात लिखी है, वो हम आगे कहीं सुनवाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इबारत में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से आपको खोजने हैं शैलेंद्र के लिखे गाने। अब जरा ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बूझिए और हीरोइन का नाम भी पूछिए। यहां पर फिर एक पुकार है।

मधुमती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी की धुन थी। और हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। हीरोइन का नाम तो बताए, हीरो का नाम भी, वैजंती माला और दिलीप कुमार। हमने एक सवाल आपसे पूछा था जब हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था कि एक और कौन सा गाना जिसमें महिला की तड़प है उस स्त्री की, लीला नायडू की। सभी श्रोताओं ने लिखा है कैसे दिन बीते कैसे बीती रहती है पिया जाने ना। सच में ये गाना गाने के बोल को ध्यान से अगर सुने और पर्दे पर अगर हीरोइन को देखें तो एक अजब सा दर्द है, जो अनकहा दर्द लीला नायडू आंखों से अभिनय करती हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी लिखा, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। यहाँ पर एक और स्त्री मन की पीड़ा एक और गाने में है, क्या आपको याद आ रहा है? वो गाना आशा भोसले की आवाज में है और सलील चौधरी का संगीत है। फिल्म का नाम बता दें या आप खोज लेंगे वो गाना। आज की इबारत में वो लाइन भी है, सावन की फुहार। चलिए हम इतना आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम भी नहीं बता रहे हैं। आशा भोसले की आवाज में स्त्री मन की पीड़ा है और पर्दे पर भी वो दर्दीला सा दृश्य है, एक स्त्री है जो तड़प तड़प कर अपने पति से मनुहार कर रही है। याद कीजिए वो गाना और लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश आजाद होने से पहले बल्कि देश की आजादी के बाद भी अपनी सुंदर रचनाओं से आवाम के जहन को सदैव परिष्कृत किया। शैलेंद्र जी ने अपने गीतों के जरिए आम इंसान के जज्बात, उनके एहसासात को सच्चाई के फलक पर चमकते हुए सितारे की तरह सजाया। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शैलेंद्र जी के लिखे गीतों में चाहे जितना भी दुख या संघर्ष हो, लेकिन उसका अंत हमेशा उम्मीद और हौसले पर होता था। वे जिंदगी से हार मानने की सीख कभी नहीं देते थे। जब उन्होंने रोमांटिक गाने लिखे तो उनमें भी मर्यादा और समर्पण की भावना थी। अब बताइए आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? हमें लगता है कि तीसरी कसम फिल्म ऐसी फिल्म है जो हम सबके जहन में बसी हुई है और आप सबके जहन में। आप बताइए आपने ये फिल्म देखी, कहाँ देखी, कब देखी, कोई खास याद हो तो वो भी साझा कीजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म का जिक्र किया है, लेकिन हाँ अलग अलग गाने सुझाए हैं श्रोताओं ने। बहरहाल देखिए हम जो गाना सुनवा रहे हैं, क्या ये गाना आप सबने सोचा था? और साथ में हमें हीरोइन और हीरो का नाम भी बताइए। एक पहेली ये हो गई, एक पहेली हमने आपसे पहले पूछी थी कि स्त्री मन की तड़प है एक गाने में, आशा भोसले की आवाज है, जिसमें फुहार शब्द आता है, सावन शब्द आता है। आज की इबारत से ही हम पूछ रहे हैं वो कौन सा गाना है। फिल्म का नाम गाने के बोल टाइप कीजिए। फिलहाल बताइए हीरो हीरोइन के नाम। फिल्म तीसरी कसम।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

तीसरी कसम फिल्म का ये गाना था, मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और जैसे दिल चीर के रख देता है ये गाना, ऐसे लगता है कि भीतर कहीं धस के स्थित हो गया है, ठहर गया है, ये गाने से बाहर हम निकल ही नहीं पाते हैं।

होंगे, सब मेरे पसंद के होंगे। और हमें खोजने में, ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही कि कौन सा वाला गाना हम बजाएं, कौन सा वाला छोड़ दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार। सली चौधरी ने इस गाने में लोक संगीत और शास्त्रीय धुन का जो मिश्रण किया है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लता जी की सुरीली गूंज और बीच बीच में गूंजते कोरस और वाद्यों का प्रयोग सुनने वाले को एक अलग ही सम्मोहक लोक में ले जाता है। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास का मील का पत्थर है, जिसे आज भी लोग सुकून से सुनते हैं। फिर एक श्रोता लिख रहे, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांचे। दरअसल ये ऐसी पंक्तियां हैं जो लगता है कि बस कभी दर्द भरे क्षण रहे हो तो ये गाना हम सबके लिए ही लिखा गया हो, और ऐसा दर्द भरा लम्हा कहीं न कहीं हम सबके जीवन में आता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कुछ गीत इनमें से हो सकते हैं। बरसात में हमसे मिले तुम, सनम बरखा बहार आई, अंखियों में प्यार लाई, और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने लिखे। हम कितना बताएं और कितना पढ़ें, आप खुद विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर सुन लीजिए, देख लीजिए। और हाँ, हमने आपसे सवाल पूछा था कि जो एक गाना है, स्त्री मन की पीड़ा का गाना है, दिल चीर देने वाला गाना है, वो फिल्म है जागते रहो। सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो। सभी श्रोताओं ने, मतलब एक नहीं कई श्रोताओं ने। और तीसरी कसम फिल्म के गाने के लिए एक श्रोता ने लिखा है कि जी देखी है एक बार थिएटर में, एक बार टीवी पर, राज कपूर और वहीदा रहमान होते हैं पर्दे पर, और ये हमने पहली भी आपसे पूछी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुम्हें याद करते करते जाएगी रेंसारी, पर्दे पर अभिनेत्री वैजंती माला ने इस गीत को जीवंत किया है। महल के सन्नाटे, जलते हुए दियों की मध्यम रोशनी और उनके चेहरे के संयमित भाव, बिना चीखे चिल्लाए आंखों की खामोशी से बात कहना। दरअसल ये वो अभिनेत्रियां हैं जो आंखों से अभिनय करती थीं। वैसे वैजंती माला तो एक बहुत सुंदर नृत्य के लिए भी जानी जाती हैं, तो जो वाचिक अभिनय होता था उनका अलग ही होता था, मिसाल कायम करती थी। बहरहाल अब बात चली है इस गाने की, मतलब जो हमने आपसे पूछा था, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, जागते रहो फिल्म का, तो यही गाना सुन लिया जाए। लेकिन एक कमेंट और, तब तक हम पढ़ देते हैं। बिना शंकर जयकिशन के शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जा सकता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त हो सकेंगे। क्या बात है भाई, खुरच कर देखें। सच में जब वो गाने लिखते हैं तो लगता है कि दिल को सचमुच खुरच दिया है, चाहे वो जब बेटी के विदा होने की बात हो, चाहे स्त्री मन की पीड़ा हो, या फिर आम जिंदगी के जीवन का दर्द हो, या आम इंसान की बात हो। चलिए, बात तो चल रही थी जागते रहो फिल्म के इस गाने की, सुनिए और बताइए किसकी है आवाज, संगीतकार का नाम भी बताइए। आपको इस गाने में क्या खास बात लगती है, फटाफट बता सकते हैं तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल ऐप पर हमें पहली जो होती प्रश्न देर से मिलता है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगली बार तुरंत जवाब न देकर दो गाने के बाद देंगे।

जागते रहो फिल्म का गाना था और आशा भोसले की आवाज, सलील चौधरी का संगीत। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आशा भोसले की रेशमी और जादुई आवाज ने इस गाने में जान फूंक दी है। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव, मासूमियत और दर्द झलकता है जो रात के सन्नाटे और बारिश के मौसम पर पूरी तरह फिट बैठता है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र का अर्थ पर्वत का राजा होता है। ये शब्द संस्कृत के दो शब्द शैल और इंद्र से मिलकर बना है। इसे शक्ति, स्थिरता और विशालता का प्रतीक माना जाता है। शैलेंद्र के व्यक्तित्व में ये गुण पाए जाते हैं जिसे उनके द्वारा लिखे गए गीतों में हम महसूस कर सकते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, महान गीतकार जिनके गीत समाज को जीना सिखाते हैं, वैल्यू देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। महान गीतकार कविराज शैलेंद्र जी के 103वें जयंती पर शत शत नमन। और बहुत सारे गानों के बोल इन्होंने लिखे हैं। अब बारी है इस गाने की जिसके लिए सभी श्रोताओं ने लिखा है, फिल्म श्री 420। बताइए कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जल्द से लिखिए। अगला गाना कौन सा सुनवाया जाए जरा, ये भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए। अभी शैलेंद्र के लिखे बहुत सारे गाने हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हैं। कौन सा गाना सुनवाएं आप बताइए।

0: राज कपूर और नरगिस, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी श्री 420 और बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र के गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, वे आम आदमी के दिल के धड़कन थे। उनकी कलम में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, शहर की तन्हाई का दर्द, इसलिए उनके गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं और सुनने और गहराई से समझ सकने वाले को अपनी ही कहानी सी लगते हैं। तो अब आगे बढ़ा जाए और अगला गाना सुना जाए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है। देखिए कि आपको सुनना था या नहीं, आपके पसंद का था, जरा सुनिए और बूझिए फिल्म का नाम।
1: दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
0: फिल्म का नाम आपको बूझना है।

थी रात और दिन, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजें। इस फिल्म का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं ने जल्द से जल्द बताया, सही बताया। और एक सवाल हमारे जहन में आया है, वो ये कि शैलेंद्र पर एक गाना फिल्माया गया था जिसमें, जिस फिल्म में वो बैंजो बजाते हुए गाना गा रहे हैं, वो गाना आपको याद है या फिल्म का नाम याद है तो बताइए, या फिर गाना या फिर फिल्म का नाम, जो भी आपको याद हो बताइए। कि एक फिल्म है जिसमें वो बैंजो बजाते हैं, मतलब वो फिल्म में खुद है शैलेंद्र। तो ये श्रोता ने, हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है, तो हम उन्हीं की ओर से ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, और इसका सही जवाब आप दे पाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्वत चट्टानों के वे समूह जो हमें अपने अडिगता सिखाते हैं, शैलेंद्र जी स्वभाव से ऐसे ही सहज और सजग इंसान थे, लेकिन वक्त ने उन्हें भी अंततः राज कपूर के दर पर लाकर खड़ा कर दिया और वो फिर अपनी ही मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र की कलम ने गीत नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने जीवन को सुर और भावनाओं को आवाज दी। उनकी लेखनी में आम आदमी की खुशियां भी है, संघर्ष भी, और प्रेम की कोमल अनुभूति भी। अब एक ऐसा गाना आपको सुनवा रहे हैं जो आपको यादों के गलियारे में ले जाएगा। बताइए कौन सी याद ताजा हुई है गाना सुनकर, और हीरोइन का नाम जरा बूझिए, फिल्म बंदिनी, कौन सी याद?

बंदिनी फिल्म का ये गाना था और बहुत ही मार्मिक गाना था। नूतन होती है पर्दे पर और सभी श्रोताओं ने इसे लिखा है कि रुला देने वाला गाना है, खासतौर से लड़कियां और औरतें तो ये गाना सुनकर रोती हैं। एक हमारी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हर राखी पर ये गाना हमें रुला देता है और ये गाना सुनकर स्त्रियां क्या पुरुष भी रोते ही आंखें नम हो जाती हैं। और हमने एक पहली पूछी थी फिल्म की, कौन सी वो फिल्म है जिसमें शैलेंद्र बैंजो बजाते हुए पर्दे पर नजर आते हैं, बूट पॉलिश फिल्म चली कौन सी देश गुजरिया तू सज धज के, लेकिन ये बोल गाने के हमारे इबारत में नहीं, इसलिए ये गाना हम आपको सुनवा नहीं रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म का ये गाना। जरा हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और साथ में याद कीजिए क्या किसी दोस्त ने आपके साथ किसी तरह की दगाबाजी की या किसी दोस्त ने आपका साथ निभाया। चाहें तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, टिप्पणियां आपकी सुरक्षित रहती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

0: संगम फिल्म का गाना मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, वैजंती मारा राजेंद्र कुमार और राज कपूर होते हैं इसमें हीरो हीरोइन। और सभी श्रोताओं ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया, बहुत फास्ट दिया क्योंकि वक्त कम है और ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके हैं। और भी बहुत सारे गाने हैं जो छूट गए हैं, जिसे आप सुनना चाहते थे, हम सुनवाना चाहते थे, लेकिन वक्त की पाबंदी। बस आज का सुरीला सफर बस इतना है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

दोस्तों नमस्कार। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि हमेशा खुश रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। लेकिन हम अपने मन को अधिक शांत और खुश रखने की आदत जरूर विकसित कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हम हर दिन उन बातों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे जीवन में अच्छी हो रही हैं। खुशियां ही

0: दोस्तों, जब हम खुद को खुश रखने के छोटे छोटे से तरीके अपनाते हैं तो ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, भरपूर निद्रा और संतुलित भोजन की आदत बनाकर भी खुश रह सकते हैं। दूसरों की मदद करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों का आनंद लेना सीखें। यही है खुश रहने के बहाने।
1: मैं

ईश्वर में आस्था और प्रार्थना से भी मन को शांति मिलती है और जीवन में खुशियां भी इससे मिल सकती हैं। यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो प्रतिदिन वो कुछ समय अपने पूजा, जप तप या ध्यान के लिए जरूर ही निकालते हैं, लेकिन हमारे जीवन

का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे प्यार करो, खुश रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात बड़ी छोटी सी है, पर अपने आप में ही खुश रहने का बहुत सुंदर आधार भी है। जब हम इस तरह की सोच के साथ जीते हैं और साथ ही अपनी भी देखभाल करते हैं, तो मन अधिक संतुलित और प्रसन्न रहता है। याद रखिए, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हमें कभी दुखी ना हो। इसका मतलब है कठिन समय में भी उम्मीद, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करते रहना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।

0: गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
0: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था? आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
0: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और

0: फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
2: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीते अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार

0: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए। सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं जाने माने गीतकार शैलेंद्र को, आज उनकी जयंती है।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45 पर
1: सिर्फ
0: विविध भारती पर।

0: बूट पॉलिश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: उसने कहा था। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित था। आज उनकी जयंती है, उन्हीं की याद को समर्पित था यह कार्यक्रम। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है। भारतीय थिएटर की रवैया।

सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

ताजमहल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। डॉक्टर प्रकाश पाठक, कुमारी डेल्सी पाठक, प्रिंस पाठक ने किला वार्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड इंदौर से, वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक और इनका पूरा परिवार। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी राम गाडेकर और इनके पूरे परिवार की ओर से, उमर खेड़ जिला यवतमाल से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की धुन थी, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म थी पतिता। इसे सुनने के लिए पत्र लिखा था आप सभी ने गेवराई मराठवाड़ा से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से पत्र मिला। बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत और चेतन नाहटा की ओर से फरमाइश आई थी। और जिला वाशिम से एकनाथ काले, आशाताई काले, ज्ञानेश्वर, शिवांशु, रविंद्र पवार की ओर से फरमाइश हमें मिली। चलिए अब सुने अगला गीत, ये फिल्म आंखें, लता मंगेशकर की आवाज़।

0: कभी।
1: आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में शब्दकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। पसंद करने वाले हमारे श्रोता तालुका उमरखेड़ ढाड़की से राम गाडेकर, सुनीता गाडेकर, अभिजीत कोमल और अभिषेक। इसी गाने को पसंद किया था अकोला से प्रकाश खेडकर, मीरा ताई खेडकर, आरती, संतोष, पूजा और इनका पूरा परिवार। फरमाइश आई थी इन सभी की भी बड़वाह मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मुमताज मोहल्ला नौगछिया से, दूसराइल अंसारी, रहमान अंसारी, आलिया अंसारी, सीरत और इनका पूरा परिवार। आइए अब सुने अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना। संगीतकार थे राहुल देवबर्मन। फिल्म थी पड़ोसन। पसंद करने वाले श्रोता, हमारी ये यवतमाल विदर्भ से चंदा किशन कुमरे, निकिता गणेश कुमरे और इनके परिजन सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस चंडीगढ़ से और खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना, शेख, मूसा, राजकुमार और इनका पूरा परिवार।

दादा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, येसुदास की आवाज में। कुलवंत जानी के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और प्रगति नाचानी की। परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय, मन्नत, पुष्पा, सुदेशना और निम्मो की फरमाइश थी।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी और पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू और इनके अन्य साथी, ग्राम लुहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव की फरमाइश थी।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, फरमाइश थी आप सभी की अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद एकमल, नफीसा परवान और जाहिदा की फरमाइश थी। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर।

चंद्र किरण, प्रीति, छाया और इनके परिजन। जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, ईशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनल वली और अफजल मलिक। और इसी गाने की फरमाइश आई थी कुल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना और इनके मित्रगण। गजानन लिखार, मनोज लिखार, संजना लिखार ने फरमाइश भेजी थी महाराष्ट्र सामंगी से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
4: All right, as you wish।
5: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
4: क्या है?
5: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
4: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
5: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
3: ये आपने कैसे समझ लिया?
5: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
4: मगर आप हैं कौन?
5: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
4: भूखे हो, पैसा चाहिए, लो।
5: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
3: आप क्या चाहते हैं?
5: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
4: स्याही खत्म हो गई?
5: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
3: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
5: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
4: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
5: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
3: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
4: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
5: मैं आगे बढ़ूं?
3: ओह श्योर।
5: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
4: और वो उससे प्यार करने लगता है, यही ना?
5: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
3: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
5: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
3: फिर?
5: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
3: पर क्यों?
5: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
3: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
5: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
4: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
5: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
3: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।

0: लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
1: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
1: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
1: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
1: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
2: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
2: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
1: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
2: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूँ।
1: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
2: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
1: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
2: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
1: स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
2: रियली?
1: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
2: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
1: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
2: अरे इसमें क्या बोलना,
1: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
2: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
1: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
2: प्लीज मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
1: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
2: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
1: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
2: बेकार की जिद मत करो।
1: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
2: नहीं।
1: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
2: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
1: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
2: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
1: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
2: चलो अब हम चलते हैं।
1: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
2: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
2: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपने गुलाम समझते हो? I hate you।
1: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
2: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
1: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
2: जब देखो तब लव लव लव। मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
3: लीना लीना, ये झूठी जिद है।
2: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
1: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
2: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
1: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
2: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
1: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
2: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
1: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
4: दोनों पागल हैं।
3: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। कहाँ जा रही हो भाई?
4: देखो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं?
3: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
4: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
3: ये साड़ी कब खरीदी?
4: कैसी लगती है?
3: समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है।
4: अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो?
3: रेखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में नाना करते हैं। हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़ें झगड़ें, लेकिन एक दूसरे की बात तो रखते ही हैं। जबकि आज की ये पीढ़ी एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें किसका दोष है? समाज का, समय का या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में
4: बस एक मिनट, ये टेबल लो।
3: टेबल किस लिए?
4: इस पर चढ़कर

0: तुम मुझे चाहती हो।
1: क्या?
0: मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, आई लव यू।
1: हे भगवान, इनकी सर पे भी भूत कैसे सवार हो गया? छोड़ो, मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली।
2: पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ, ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
1: उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है।
2: मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? हैं? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ।
1: इतने जोर से ना कहो।
2: ऑल राइट, हाथ जोड़कर कहता हूँ।
1: हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम दोनों ने फोन करने वाले थे ना?
2: बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं।
1: छोड़ो मुझे बहुत से काम है।
2: चुप रहो, मैं कहता हूँ। मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: कल तुम्हें मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी?
2: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
1: तो कितने हो?
2: इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई?
1: बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई। तुम्हारे जैसे सिद्धि मतलब ही पति के साथ शादी करने का, गृहस्थी चलाने का मतलब ही यही है कि कुएं पड़े रहना हो।
2: जो मुंह में आए वो बकती जाती हो, एक ऐसा थप्पड़ देता हूँ मैं।
1: मारो, मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं।
2: लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है।
1: मैं चाहती हूँ, कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो। मारो मुझे।
2: रेखा,
1: हे भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे उठा लो।
2: मर गया, गोर मर गया। अब तो जरूर चाचा जी होंगे। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। ये लो, रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं ही पोछ लेता। आइए चाचा जी। कैसी है चाची जी?
3: अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसे हो?
4: अरे मनोहर, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी?
1: मैं,
4: कौन रो रहा है? अरे रेखा बेटी, क्या हुआ?
2: कुछ नहीं चाचा जी, वो जरा दिल भराया इसका बस।
3: हमें देखकर?
2: हाँ,
3: हमें देखकर दिल क्यों भराया?
4: मनोहर सच बताओ, क्या बात है?
2: अब कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे बिना वजह
3: किसी को रोना नहीं आता, समझे?
4: सीमाए तुम्हारी चाची के।
3: क्या बिना वजह रोती हूँ मैं?
4: रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो, इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता। मनोहर बताओ बात क्या है?
2: अब कुछ नहीं। ओ भाई रेखा, पानी वानी भी लाओगी? नहीं, जाओ।
1: अच्छा हो गया आप लोग आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही डालते।
3: मनोहर, बहू को क्या शिकायत है?
2: कुछ नहीं, वो जरा जिद्दी है। बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी।
4: ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा?
2: मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: गधा कहीं का, इस उम्र में शर्म नहीं आती?
4: इससे पहले तुमने उसे डांटा था?
2: नहीं, गलत मत समझिए। थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ।
4: तुम पागल वागल तो नहीं हुए? ये कहने की कोई वजह?
1: लीजिए पानी।
2: इसकी बहन की बेटी लीना।
4: कौन? प्राण जीवन की बेटी?
2: लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है, यानी कि हाँ वही होगा।
4: क्या कहा तुमने?
2: मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी।
3: ये लीना वाली बात क्या है?
2: लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है। वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं।
4: अब भी लग रहे हैं क्या?
2: कमरा खुलने से मालूम होगा। मैं खोल कर देखा।
3: नहीं, रहने दो, इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं। जवान लड़के लड़की बैठे हों तो उनको बैठे रहना देना चाहिए।
4: संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो?
2: हाँ, हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं, बस सिर्फ कहे तो काफी है।
3: अरे पागलो, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने?
2: हाँ? कमाल है चाची जी, ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक।

0: कमाल है।
1: हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना, तुम्हारे इस नए जमाने से तौबा भाई। चलो रेखा बेटी
2: जी,
1: सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बनाकर लाओ।
0: हाँ, और मेरे लिए भी ना भूलना है।
3: कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी, इसे इस तरह क्यों परेशान करते हो?
0: दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा।
1: ये बात तो सच कही।
3: क्यों, तुम क्यों दखल देते हो बीच में?
1: अरे मनोहर, खूब याद आया भाई, हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना। ये लो पैसे लो।
0: नहीं नहीं नहीं चाचा जी, आप ही क्या कर रहे हैं?
3: पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए।
0: लेकिन
3: अभी कुछ मत कहो।
0: आप भी चाची।
4: अरे चाची की चप्पल तू ही आ जा मेरे।
3: ये मनोहर को आज क्या हो गया? तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था?
1: अरे भाई छुट्टी के मूड में होगा।
3: पागल है, मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी?
1: ना समझी है और क्या। नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था?
3: लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था?
1: अरे जवान है, एक कभी कभी मजाक भी सूझता है, छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है। अगर बात बढ़ानी ना हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम क्या कहती हो?
3: तुम मेरी राय कब से मांगने लगे?
1: नहीं नहीं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूं तो तुम एक बार नहीं 100 बार बोलोगी।
3: लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं।
1: लेकिन मान लो कि मैं तुमसे कहूं तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी।
3: क्यों, तुम इतने मूर्ख हो क्या?
1: और ना कहो, इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती। आ, आ, आ, आ, आ।
5: नमस्ते चाचा जी।
1: आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो।
5: हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ।
1: रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना?
5: जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला
3: कोई नहीं।
1: अरे तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूं कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी।
5: अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी?
1: हाँ तो भी, इसमें कोई शक नहीं।
5: आई डोंट बिलीव।
1: रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: हाय हाय, कुछ लाज शर्म है, सबके सामने ये कैसे कहूँ?
1: क्योंकि क्योंकि ये मेरा हुक्म है।
3: अरे तुम्हें तो पागलों की तरह हुक्म देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा हुक्म मानता कौन है?
1: तुम सबके सामने मेरे हुक्म का अनादर करती हो।
3: सबके सामने तुम खुद ही अपनी आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मैं क्या करूँ?
1: तुम पागल हो, हमें तो बस सबको दिखाना है।
3: मैं कोई लोगों के सामने दिखाने के लिए भैंस नहीं हूँ।
1: तुम नहीं, तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, इसमें तुम्हें दिखाने की क्या बात है?
3: चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए हैं।
1: वो तो तुमसे शादी होते ही पड़ गए थे।
3: 100 की सीधी बात एक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, समझे?
1: अरे तू तो क्या तेरा बाप भी बोलेगा।
3: खबरदार जो मेरे बाप को बीच में लाए।
1: बीच में नहीं, पीछे पीछे घुमा करता था अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए, कहीं चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया।
3: तुम क्या अंधे थे?
1: अंधा नहीं, उदार था। उदार
3: उदार नहीं, उधार थे उधार। मेरे आने के बाद ही घर में 2 वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या?
6: चाची जी प्लीज।
3: नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो।
1: पागल है, कुछ समझती ही नहीं।
3: जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी।
5: चाची जी आप जरा शांत हो जाइए,
3: अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती।
1: सुनो सुनो सुनो रामा, देखो देखो एक बात याद रखना रामा, एक बात याद रखना।
7: लीना
5: क्या है?
7: तुम्हारे कारण ही घर में आग लगी है ये?
5: मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम्ही ने सुलगाई।
0: अरे सब कहाँ चले गए भाई?
5: अंदर है।
0: क्यों?
7: हम जैसा ही हाल है।
0: हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठन गई है?
7: हाँ।
0: वाह मजा आ गया।
5: आपको इसमें क्या मजा आया?
0: अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया ना।
5: मौसा जी सचमुच जोकर है।
7: तुम्हारे मौसा जी हैं?
3: मुझे मौसा जी का

0: हेलो शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर, लीना ने आपसे कहा था ना कल, यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी लीना। हाँ? अपनी कार की डिलीवरी मिलने वाली है कल।
1: रियली? ऑफ वाइट कलर की है ना?
0: एक मिनट, हेलो, ऑफ वाइट कलर ही मिलेगा ना? हाँ हाँ
1: हाउ नाइस।
0: अच्छा अच्छा कल कब आऊं लीना? 4 बजे तुम फ्री हो ना?
1: हो यस आई एम फ्री।
0: हाँ हेलो, हम लोग 4 बजे आते हैं, सब तैयार रखिएगा। ओके ओके लीना, एट लास्ट वी गॉट इट,
1: थैंक गॉड। चलो पूरे दिन में एक तो अच्छी खबर मिली। मैं तुम्हें चाहती हूँ मामले में तो पूरा दिन बर्बाद हुआ था।
0: अरे कह दिया कह दिया।
1: क्या?
0: आखिर लीना ने कह ही दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: आई लव यू वीरेन, आई लव यू।
0: अरे मौसा जी, हमारा मामला तो निपट गया।
2: देखो देखो इन लोगों का निपट गया।
1: मूर्खे लीना। अरे मौसी, तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, उल्टा तुमने मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उसके बदले तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो।
0: चलो मौसी तुम भी कह डालो।
1: कह दो ना, चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा।
0: और क्या?
3: मुझे किसी को अच्छा बच्चा लगवाने की जरूरत नहीं है, और चाची जी तो मेरे ही पक्ष में है,
4: वो तो मैं हूँ ही। इनकी समस्या भी सुलझ गई।
3: अरे इस पगली ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: चाची जी, चाचा जी, जल्दी है। अरे भाई रेखा ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: चलो सोफे से नीचे उतरो, लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: डियर डियर, एक बार नहीं, दो दो बार, दो दो बार।
5: क्या हुआ मनोहर, क्या बात है?
2: चाचा जी, दो बार मैं जीत गया।
0: और मैं भी दो बार जीत गया।
2: चाची चाची, हमारा निपट गया। अब तो जीत छोड़ दो, एक बार मेरे चाचा जी की ओर तो देखो, बेचारे कितने नर्वस हो गए।
4: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे, इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे जनरल तो जनरल ही सही, रमा तुम भी एक बार कह ही डालो।
4: तुम्हारे इन मूर्खता भरी बातों में मैं आने वाली नहीं, मैं इतनी नादान नहीं हूँ।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो, हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं, तुम अपने आप को समझती क्या हो। मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
1: चाचा जी, चाचा जी।
5: मर गया चाचा।
3: अरे ये क्या कह रहे हैं?
5: सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है, और ये दो कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है।
4: तुम कुछ भी कह लो, मैं टस से मस होने वाली नहीं।
1: क्या हो गया, क्या हो गया इनको, क्या हो गया, क्या हो गया? देखो तो मनोहर, देखो तो क्या हो गया।
5: मनोहर
1: जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो,
5: डॉक्टर रहने दो।
1: क्या हो गया?
5: एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार मेरे लिए कह दो।
1: क्या कह रहे?
5: रमा सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
1: देखो मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। मुझसे भूल हो गई,
5: एक बार कह तो।
1: मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ।
5: खाओ मेरी कसम
1: तुम्हारी। अच्छा इसका मतलब तुमने
5: नाटक किया था।
1: चाचा जी आप भी।
5: बच्चों इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
6: कहाँ रखूं?
2: अरे भाई ये मिठाई वाला है, जरा शॉकिंग मिजाज वाला है, वे खोल दो ये पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांटकर पार्टी बना लो।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
1: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो, मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं पोछ आइए आइए चाचा जी।
0: मनोहर अजय कश्मीरी।
2: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: डियर डियर एक बार नहीं।
0: रेखा कामिनी कौशल।
3: मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
1: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
3: अंदर है।
1: क्यों?
0: लीना भारती कानड़े।
4: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था। देखिए, हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना?
0: वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
0: जगमोहन राजदीप।
6: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे
0: रमा लक्ष्मी शर्मा।
5: आना चाहिए।
0: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानडे। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
7: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
8: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
7: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
8: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी।
7: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
8: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
7: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
8: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: कुछ दिल ने कहा,
8: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
9: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
8: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
9: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
10: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
8: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
9: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
8: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
9: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
8: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
10: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
8: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
10: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
8: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय। बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया, उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका तीसरा भाग।
1: मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मोमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आई विल रिजेक्ट एंटायर माई ट्रेनिंग एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो मुझे किसी भी फॉर्म को इमिटेट, अनुकरण नहीं करना है, किसी भी फॉर्म से ये लेके, वहां से ये लेके, वो लेके कुछ गुलदस्ता बनाना है या खिचड़ी बनानी है। सबका आदर करते हुए मैंने ये तय किया कि मुझे मेरी कहानी के लिए नई तरीके की रंग भाषा खोजने की सोचनी पड़ेगी।
2: गजब।
1: कोई ये ना कहे कि मूवमेंट वहां से लिया, कोई यह न कहे कि कॉस्ट्यूम वहां से लिया, कोई ये न कहे कि म्यूजिक यहां से उठाया, लाइटिंग वहां से उठाई, ये कुछ मेरे नाटकों पे आक्षेप नहीं आना चाहिए। इसलिए पहला मैंने टेस्टिंग ग्राउंड जो तैयार किया वो था झुलवा।
2: जी, जो आप वहां से लौट के आते हैं।
1: जो मैं वापस से लौट के आया और दो तीन साल यहां का व्यावसायिक नाटक सीखा मैंने, वो भी रह गया था मेरा सीखना।
2: जी,
1: कि व्यावसायिक नाटक कैसे होता है, टूर कैसे होते हैं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है। उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट एक्टर के हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेरडे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
2: ये एनएसजी से लौटने के बाद,
1: लौटने के बाद मैंने 3 साल के बाद नाटक किया। अच्छा। मुंबई में आने के बाद तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था, वो बर्निंग इशू है।
2: जी बिल्कुल।
1: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं यिल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान कर दूंगी, और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है, वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका गुलिया क्या है, उसका पलाना, वो कुछ नहीं, सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इशू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था उत्तम बंडू तुपे, एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास, और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया, और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
2: वाह वाह।
1: 10 अक्टूबर 1987।
2: गजब।
1: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है।
2: जी जी।
1: तो वहां पर ये पहला शो हो गया, और वहां पर कारण जी से लेके, अशोक वाजपेयी से लेके, ऑल हुज हु ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे, और वो पहला ही शो हमारी पहली रन थ्रू थी।
2: ओहो।
1: पर वो जो गजब का शो हुआ है, उसके बाद हमने 450-450 जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
2: सयाजी शिंदे थे,
1: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेल, अरे सारे लोग थे।
2: वाह।
1: भारत तांडेल, तो ये सारा

0: 42 एक्टर स्टेज पे थे, फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे। तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार, ये कहीं से कुछ नहीं लिया है, उनका कोई ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी को जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती। तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलन समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान को
1: समर्पित
0: चढ़ाई
1: हो रही
0: जाती,
1: थी।
0: समर्पित की जाती है, और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेके निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां वहां हुआ। नामदेव ढसाल जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो पहली बार जब देखने आए, उन्होंने देखा नारायण सुर्वे, देखा अपुल देशपांडे, जितने भी महाराष्ट्र में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा,
1: जी
0: या इवन देश में भी, हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसाल ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। आई है तो मुझे लगता है रविंद्र नाट्य मंदिर में आए थे वो। वो जब देखा उन्होंने तो वो खुद रोते हुए अंदर आ गए बैक स्टेज में,
1: जी
0: और उन्होंने गले लगाया और बोला कि तूने तो मेरी ही कहानी यहां मेरे सामने रखी है। एंड ही वॉज इन टीयर्स।
1: जी
0: उन्होंने उसके बाद भी 14 शो देखे, हर बार वो उसी माइंड सेट में आते थे। उन्होंने उसमें से कुछ शो इंटरनेशनल कोई साहित्य का करते थे उसमें लगाया, माधव गडकरी और दया पवार, और इन्होंने एक जागतिक मराठी परिषद हुई उसमें वो जानबूझ के शो रुका हुआ था तो करवाया। तो ये था कि उन्होंने एक वाक्य जो कहा तो मुझे बहुत पसंद आया, जो बहुत फेमस भी है, नामदेव जी ने जो कहा कि हम दलित पैंथर लगभग 35-40 साल होने को आए थे जो भी, कि जो इतना नहीं कर पाए ये नाटक उससे 2 कदम आगे चला गया।
1: वाह क्या बात है, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: पु ल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पु ल देशपांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे।
2: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को यह लगना चाहिए ये भारतीय है
1: जी,
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी आधा या गजब तीचे आधा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था
1: जी जी।
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है।
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है
1: जी,
0: फिर क्या होगा। तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के 2-3 ये रखे उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया और वो क्लिक हो गया, यार जिसकी मैं खोज कर रहा था शायद यही है।
1: वाह।
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ।
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया, और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह।
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज है। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग था, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो एनएसडी रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है, मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको रोक रही थी?
0: ज्यादा था। मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने, मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस ऐसे थे, सब इसने दांव पे लगा दिए, अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो। तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर एक साल के बाद एक झुंझवारेश नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया। और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर दो चार पांच दस नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले, नहीं यार उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बात है, यहाँ एक गाना सुनते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी
1: वो देहाती लोग थे वहां के।
0: जी जी बिल्कुल,
1: खासकर तैयम, मुड़िए टू और पड़ेनी, मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेठ जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड, जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली, डायलेक्ट होती थी मलयालम की। तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी। मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हॉरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन

0: भाषा सुनने की आदत नहीं थी
1: जी।
0: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है तो जी, ऐसा जी। लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से। तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी जो हमारी दुभाषी जो थी वो महिला से हम एक एक एक एक एक एक शब्द या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी दो तीन वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के तुम्हारा नाम क्या है फलाना क्या है जो डे टू डे की लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी वो हमारे साथ रहती थी, वो दो रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार चार चार पांच पांच दस दस सेंटेंस, तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में गांव में, कैननोर जिला है उसके गांव में तैयम देखने गए थे और शाम को हम खाना वाना खा के जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए। हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे। तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चले गए सब उनके घर वाले और एक होटल वहां एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था तो उसको हमने मलयालम में टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैननोर में आने वाली बस है जाने वाली यहां से वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई कोई उधर से आई और एक बस आई और वो चली गई। तो ये सब पतेले बर्तन समेटने लगा तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैननोर जाने वाली बस कहाँ है। तो उसने कहा वो पोई
1: मतलब गई
0: गई वो चली गई अभी, अब वो लगभग एक फरलांग दूर चली गई थी। तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। मैं इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से। तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके, रात को 9:30 बज गए और गांव में देहात में 9:30 बजे तो मध्य रात से ज्यादा हो जाता है, अब जाएं तो कहाँ गए। तो मैं और हॉरेन हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था, केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर, तो चलो जहां जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते, वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से और वो भी भात की खेती से पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए। तब 11:30 बज रहे थे
1: और चावल के खेत तो गीले,
0: चावल के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
1: वाह।
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स।
1: जी जी।
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे
1: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
0: वो तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
1: जी।
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव, तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई
1: बस पोई।
0: हाँ। तो बोली अब क्या करोगे, तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं कॉफी बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाऊं। तो मैंने कहा ये की अगर आपको मदद करनी

0: नहीं, हमको तो ये काम करो, 1 घंटा आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए। और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो, इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने 1.5 घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा। मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई। क्यों? कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितनी भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर मैं लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा। और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, तब 4:30-5 बजने वाले थे। तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है, यहाँ सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया,
1: रेत
0: के ऊपर। और पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: हाँ, और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया। और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी, इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची। और हम ऐसा कैसा, ये दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा। फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना। ट्रेन में जाए, बस में जाए, जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा।
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह।
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा। और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
1: सुंदर बात।
0: और
1: है
0: ये ऐसा, अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
1: जी बिल्कुल।
0: यहां तक आना, और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है। अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है।
1: जी,
0: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं।
1: जी,
0: यही बात है। वो
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं और मैं उस
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
0: जी।
2: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
0: जी।
2: तो वो एग्जीबिशन रतन थियाम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
0: जी।
2: तो उन्होंने डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
0: वाह वाह,
2: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है। तो खैर, कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलका जी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से। उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी, उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलका जी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी।

0: छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स हैं, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
1: जी।
0: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहां आ गए तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी यहां पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है, तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्र हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले वामन
0: दुबले
1: केंद्रे।
0: पतले वामन केंद्रे बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
0: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
0: थोड़ी बहुत
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने ये तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
0: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
0: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई, और 1.5 घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा चिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था, तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का, और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो, तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो, और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी कुमारी थी वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की, मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
0: वो क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था, और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी, तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूं, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, 1.5-2 घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा, या जैसे भी हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी, तो मैं तो चला गया कहां, रविंद्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो 2-3 घंटा हो गया उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।
1: ओके
0: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब, तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया, नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे। अरे मैंने कहा मैं भूल गया

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है, मतलब क्या है ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान, हाँ, अपना नहीं कि दूसरों का?
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या है। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: हूँ भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये, रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहां बर्थडे होता है उसको कहां मालूम है। था, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक्के रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया, वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता,
1: लो
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासरा भर वर आलेल होता। अब वो उसको भी काम आता, ज्योग्राफी कब कितना कहाँ ऊपर आया उसको जो लगेगा वो इंपल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे

0: मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है, तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इम्पल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी।
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है।
1: जी जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषा काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा, ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूं ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी,
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो।
1: अरे भगवान,
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी।
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माता जी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी।
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है।
1: जी जी जी,
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो। तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे।
1: अरे गजब।
0: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूं।
1: ओहो हो।
0: और मैं करियर करना चाहती हूं नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूं सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, रबालेर, वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा, साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी, ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी, पिताजी, चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी, पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में।
1: अरे गजब।
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों?
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कहीं शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में,
1: और दूल्हा,
0: हाँ, दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है
1: वाह वाह
0: मेरे
1: वाह
0: मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप

0: बहुत बड़े आदमी हैं
1: हाँ
0: जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो, और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां
1: गजब,
0: 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे,
1: लो
0: अब उनको कहाँ ढूंढे। 2-3 घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में उस गली में, ये यहाँ यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आए ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो अब करे तो क्या करे। अच्छा, तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया, चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणा ही थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा
1: गजब,
0: को फोन किया, यार रजिस्ट्रार यहां नहीं है, वहां देखो कहीं आया हो। तो वहां पहुंचे हम, तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है।
1: अरे
0: अब
1: बाप
0: शादी करे तो कैसे करे। कोई 2 मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने ही, मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है, कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो, तब तेजाब की शूटिंग चल रही वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी। अब
1: वाह
0: माता पिताजी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया।
1: हो गई शादी,
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई,
1: वाह वाह
0: फोर्टी
1: वाह
0: टू रुपीज
1: जी,
0: वो ये रिकॉर्ड है दुनिया का
1: दुनिया की सबसे सस्ती
0: सबसे
1: शादी,
0: सस्ती शादी। और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मोपलवाद की फैमिली थी, और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मोपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठलं, झुनका छेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ,
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहाँ जाओगे। मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो,
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब, ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है
1: ये गाना सुनते हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, अब सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा नारायण सोनी। आज के इस खूबसूरत सफर में हम बात करेंगे कुछ नए विचारों की, कुछ जरूरी मुद्दों की और सुनेंगे आपके पसंदीदा गीत भी। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए साथियों, हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की छोटी सी मेहनत आपको अपने लक्ष्य के करीब जरूर ले जाती है। तो जुड़े रहिए युवाणी के साथ, क्योंकि यहाँ बातें होंगी आपकी, आपके सपनों की और आपके भविष्य की। दोस्तों, बात करते हैं लघु उद्योग दिवस के बारे में। तो लघु उद्योग दिवस छोटे उद्योगों की ताकत और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को समझने का अवसर है। छोटे उद्योग केवल व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि ये रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के भी महत्वपूर्ण साधन भी हैं। खासकर युवाओं के लिए इनमें आगे बढ़ने की अनेक संभावनाएं हैं। आज का युवा अपनी रुचि और कौशल के अनुसार कम स्तर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, कपड़ा, ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल सेवाएं, पैकेजिंग, कृषि आधारित व्यवसाय और ऑनलाइन व्यापार जैसे क्षेत्रों में अच्छी संभावनाएं हैं। इसके लिए जरूरी है कि युवा अपने कौशल को बेहतर बनाए, बाजार की जरूरत को समझे और नए तरीकों को अपनाए। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लघु उद्योग दिवस छोटे उद्योगों की ताकत और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को समझने का अवसर है। आज का युवा अपनी रुचि और कौशल के अनुसार कम स्तर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, कपड़ा, ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल सेवाएं, पैकेजिंग, कृषि आधारित व्यवसाय और ऑनलाइन व्यापार जैसे क्षेत्रों में अच्छी संभावनाएं हैं। इसके लिए जरूरी है कि युवा अपने कौशल को बेहतर बनाए, बाजार की जरूरत को समझे और नए तरीकों को भी अपनाएं। आज डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स ने छोटे व्यवसायों के लिए ग्राहकों तक पहुंचने का आसान बना दिया है। एक युवा अपने स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा सकता है। छोटा उद्योग शुरू करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि युवा नौकरी खोजने के बजाय रोजगार देने वाला बन सकता है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ समाज के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसलिए युवाओं के लिए संदेश है कि अपने हुनर को पहचानिए, छोटे कदम से शुरुआत कीजिए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़िए। दोस्तों, इस गाने के बाद हम बात करेंगे कि ग्रामीण भारत में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर क्या हैं और कैसे हैं। आइए उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों, अब बात करते हैं कि ग्रामीण भारत में युवाओं के लिए स्वरोजगार के कई अवसर मौजूद हैं। आज युवा अपनी रुचि और कौशल और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकता है। कृषि और इससे जुड़े काम जैसे डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती और खाद्य प्रसंस्करण अच्छी संभावनाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा गांव में हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, फर्नीचर निर्माण, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, छोटे खाद्य व्यवसाय और किराना व्यापार जैसे काम भी शुरू किए जा सकते हैं। डिजिटल तकनीक ने ग्रामीण युवकों या युवाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं। युवा ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट निर्माण और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में भी जुड़ सकते हैं। स्वरोजगार से युवा अपनी आय का साधन बनाने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि युवा अपने कौशल को बढ़ाएं, बाजार की मांग को समझें और योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय शुरू करें। सही सोच, कौशल और मेहनत के साथ गांव का युवा आत्मनिर्भर बन सकता है। दोस्तों, इस गीत के बाद बात करेंगे प्रभावी मैनेजमेंट और टाल मटोल से बचने के 7 आसान उपाय। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ प्रभावी मैनेजमेंट टेक्निक्स या टिप्स के बारे में। तो दिन की योजना बनाएं, सुबह या एक रात पहले अगले दिन की जरूरी कामों की छोटी सी सूची बना लें। अगला है, काम को प्राथमिकता दें, जरूरी और महत्वपूर्ण काम पहले करें, हर काम को एक साथ करने की कोशिश न करें। छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें, इससे काम आसान लगेगा और शुरुआत करने में परेशानी भी नहीं होगी। अगला है, समय की सीमा तय करें, हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करें और कोशिश करें कि उसी समय में उसे पूरा करें। अगला है कि मोबाइल से दूरी रखें, पढ़ाई या काम के दौरान बार बार सोशल मीडिया देखने से बचें, नोटिफिकेशन को कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं। अगला है, बाद में करूंगा से बचें, अगर कोई काम जरूरी है तो उसे टालने के बजाय कम से कम उसकी शुरुआत तुरंत करें। शुरुआत करना ही टालम टोल तोड़ने का पहला कदम है। खुद की प्रगति देखें, दिन के अंत में देखें कि आपने क्या पूरा किया। छोटे छोटे काम पूरे होने पर खुद को प्रोत्साहित करें और अगले दिन के लिए बेहतर योजनाएं बनाएं। याद रखें, अच्छा मैनेजमेंट केवल ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम को सही समय पर भी करना है। दोस्तों, यहां लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

युववाणी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम श्रोताओं आकाशवाणी नागौर का, ये चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम बालवाड़ी।

हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके मन पसंद और बेहद खूबसूरत कार्यक्रम बालवाड़ी में। और आज एक बार फिर से आपके साथ है आपकी रेडियो दीदी, मैं संगीता सिखवाल। आप सभी श्रोताओं का और सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके इस मनपसंद कार्यक्रम में। बच्चों, नफरतों में क्या रखा है? जी हाँ, नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो। क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है, न ही हमारा परमानेंट ठिकाना। याद रखें, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है, जिंदगी नहीं। इसलिए बच्चों, मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि सभी के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करें, सभी के साथ बहुत अच्छे से रहें। अगर आपको किसी की कोई बात चुभती है या खराब लगती है तो उसे नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि जीवन दोबारा मौका कभी नहीं देता। और याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है और उसमें भी बचपन, जो हमारे जीवन का, हमारे ज़िंदगी का गोल्डन टाइम है, वो भी बहुत कम है। इसलिए अपने इस गोल्डन टाइम को एंजॉय कीजिए। बच्चों, आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम बाल चर्चा से करने वाले हैं, जिसमें हमने एक बहुत ही सुंदर विषय को लिया है जो आपके और हम सभी के बहुत काम का है, खेल का मैदान बनाम मोबाइल गेम। जी हाँ बच्चों, खेल का मैदान यानी कि आउटडोर्स और मोबाइल गेम्स यानी डिजिटल स्क्रीन आज के समय की एक बहुत बड़ी बहस है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए दोस्तों, दोनों के बीच एक सीधी तुलना करके इनके नफा नुकसान पहचानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शारीरिक स्वास्थ्य की, तो खेल के मैदान से शरीर डेफिनेटली मजबूत बनता है, हड्डियाँ और हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो विकसित होती है, ओबेसिटी कंट्रोल होती है, और साथ ही धूप से विटामिन डी मिलने के साथ साथ हमारे शरीर और मन की सहन शक्ति बढ़ती है। सही कहा ना? और अगर इसके ऑपोजिट बात करूँ मोबाइल गेम की, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो। जी हाँ, लगातार बैठे रहने से मोटापा, मांसपेशियों का ढीलापन, आंखें कमज़ोर होना और रीढ़ की हड्डी का जो पोस्चर है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये तो थी हमारी जो सबसे पहली इसमें चर्चा शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। अब हम बात करते हैं मानसिक और सामाजिक विकास पे। खेल का मैदान, जी हाँ बच्चों, टीम वर्क से टीम भावना बढ़ती है। बच्चे आपस में बात करना, झगड़े सुलझाना, हार जीत का सामना करना सीखते हैं। साथ ही यहीं पर हमें रियल लाइफ दोस्त भी मिलते हैं। अगर बात करूं मोबाइल गेम्स की, तो डेफिनेटली इनसे एकाग्रता और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता तो बढ़ती ही है, लेकिन अकेले खेलने से बच्चे अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। दूसरों के साथ कंफर्ट ना होना और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इंट्रोवर्ट नेचर बन जाना या फिर आभासी दुनिया में रहना, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर एक और चर्चा के विषय में शामिल करूं मनोरंजन और सुविधा, तो खेल के मैदान पर अगर बात करें तो जगह, बारिश, धूप और दोस्तों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, हर समय उपलब्ध नहीं रहता। जबकि मोबाइल गेम बहुत ही सुविधाजनक है, मैं यूँ कहूँ कि 24/7 अगर उपलब्ध रहता है, आप कहीं भी कभी भी इसको खेल सकते हैं। खराब मौसम का इस पर कोई रिस्क नहीं है, तो भी सही बात है, मनोरंजन फुल है। लेकिन इसके साथ ही मोबाइल गेम हमारे लिए सुविधाजनक है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर बात करूँ रिस्क और सेफ्टी की, तो खेल का मैदान गिरने, चोट लगने का शारीरिक जोखिम बना रहता है, परंतु ये जोखिम बच्चों को मजबूत बनाता है। अगर बात करें मोबाइल गेम्स की, तो शारीरिक चोट का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन स्क्रीन की लत, जिसे हम एडिक्शन कह सकते हैं, साइबर बुलिंग हो सकती है और गलत कॉन्टेंट का मानसिक खतरा भी रहता है। बच्चों, निष्कर्ष तौर पर यही कहना चाहूँगी कि खेल का मैदान बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतरीन है। मोबाइल गेम को पूरी तरह से हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका समय तय होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में बैलेंस ही सबसे सही समाधान है आज के समय में। ये तो आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआती बाल चर्चा। अब आपको लिए चलते हैं एक बेहद खूबसूरत सुरीली दुनिया की ओर, सुनवाते हैं फिल्म गुलाल से पीयूष मिश्रा की आवाज़ में ये जोशीला गीत।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान

ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

वो दया का भाव, या किशोर का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव, या किशोर का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके मनपसंद कार्यक्रम बालवाणी में। बच्चों, आज ज्ञानवर्धन सेगमेंट में आपके लिए है संतुलित आहार के फायदे और जंक फूड के नुकसान। प्यारे बच्चों, संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट बच्चों के दिमाग को तेज और स्वस्थ रख

सोडियम, फाइबर, आयोडीन और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। संतुलित आहार के क्या क्या फायदे हैं, आइए जानें। दोस्तों, इससे याददाश्त मजबूत होती है, एकाग्रता से पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों में मन लगता है, मानसिक ऊर्जा बढ़ती है यानी कि थकावट दूर होकर आलस कम होता है, चिड़चिड़ापन गुस्सा खत्म होकर डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, गहरी नींद आती है जिससे दिमाग को भी काफी आराम मिलता है, साथ ही नया विकास होता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास भी इसमें शामिल है। जबकि बच्चों, जंक फूड खाने में जरूर स्वादिष्ट और चटपटा लगता है, सस्ता भी होता है और तुरंत उपलब्ध भी हो जाता है, फास्ट फूड मतलब जो जल्दी बन जाता है और फटाफट खाया जाता है, परंतु इनसे मोटापा, दिल की बीमारियां और डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याएं आजकल बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो जंक फूड के नुकसान भी सुन लीजिए। शरीर में सुस्ती यानी कि आलस बना रहता है, दिमाग धीमे काम करता है, एकाग्रता की कमी रहती है यानी ध्यान केंद्रित ही नहीं हो पाता बच्चों का जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है, हाइपर एक्टिविटी जैसे जो बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा पसंद करते हैं उन बच्चों में ये देखा गया है, शोध बताते हैं कि ऐसे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, तोड़ फोड़ ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों में इंसोम्निया, जी हाँ, नींद नहीं आने की समस्या भी ऐसे बच्चों में देखी गई है। और साथ ही एक भयानक चीज़ और देखी गई है कि ऐसे बच्चों को बहुत ही खतरनाक बुरे और आक्रामक सपने भी रात में आते हैं, साथ ही याददाश्त उनकी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और बच्चे छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं। अब ये बताइए, जीवन का सबसे स्वर्णिम काल बचपन, ऐसे में अगर हम उसे जंक फूड खा के खराब करते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही खराब हो रहा है। तो बच्चों, आप आसानी से इस चीज़ को समझ पा रहे हो। ऐसे में दोस्तों, आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक अ चाइल्ड हेल्दी शार्प एंड वाइज का नियम अपनाएं, 8 से 10 घंटे की नींद जरूर से लें, मोबाइल या टीवी का स्क्रीन टाइम कम कर दें या फिक्स रखें, या दोस्तों के साथ आउटडोर एक्टिविटीज में जरूर भाग लें। इसके अलावा जो दिमाग के लिए अच्छी चीज़ें हैं नट्स में, जैसे अखरोट, बादाम, इनको जरूर खाएं और साथ ही दिन भर खूब सारा समय समय पर पानी पीते रहें। इसके अलावा पॉजिटिव रहें और अपनी फैमिली में बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आज हमने चर्चा की ज्ञानवर्धन में। बच्चों, कार्यक्रम में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बेहद ही सुंदर बात और साथ ही मेरे सभी श्रोताओं के लिए भी, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। जी हाँ, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जी हाँ बच्चों, या फिर यूं कहूँ, जो सभी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जीवन सिर्फ एक बार मिला है, इसलिए इसमें जो आप करना चाहें, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो अब तक आप नहीं कर सके हैं, उन सभी को करने का मौका ढूंढ लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा मौका कभी नहीं देती। और हमेशा अपने अंदर एक बचपन, एक बालपन हमेशा रखिए और कुछ नादानियाँ, कुछ मस्तियाँ करते रहिए। बच्चों, बाल कहानी, जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे बच्चों का और मेरा फेवरेट सेगमेंट, जो हम बच्चों के लिए लेकर आते हैं, जिससे कुछ ना कुछ नई सीख हमें मिलती है और कुछ नया जानने का मौका भी मिलता है। बच्चों, आज बाल कहानी में आपकी दीदी लेकर आई है कछुआ और खरगोश की नई रेस। जी हाँ, वो पुरानी वाली कहानी हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार देखी भी है, पर अब इस कहानी का एक अपग्रेडेड न्यू वर्जन आ चुका है, जिसमें इन दोनों के बीच रेस भी अलग प्रकार की होगी और कहानी का परिणाम और सीख भी कुछ नया हटकर सिखाएगी। आइए सुनते हैं ये कहानी। बच्चों, पुरानी जो हार हुई थी पुरानी हार के बाद खरगोश ने अपनी गलती से सीखा और अब वह पहले की तरह कछुए का मजाक नहीं उड़ाता था। अब जब सब कुछ नया है तो एक दिन दोनों ने मिलकर एक नई रेस लगाने की सोची, लेकिन इस बार रास्ता बहुत अलग था। रास्ते में एक गहरी नदी पार करनी थी और उसके बाद एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था। अब आपको देखने को मिलेगा कहानी का ट्विस्ट, जिसमें हम देखेंगे दोस्ती और टीम वर्क। जी हाँ बच्चों, अब दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागा और नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। तभी धीरे धीरे कछुआ भी वहां पर आ गया। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और आसानी से नदी पार करा दी। इसके बाद पहाड़ की चढ़ाई का समय आया, जहाँ कछुआ धीमा पड़ गया।
परंतु इस बार खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर लाद लिया और तेजी से पहाड़

के शिखर पर पहुंच गया। दोनों ने एक साथ विजय रेखा पार की और इस तरह दोनों विनर बने। इस कहानी से बच्चों हमें नई सीख ये मिलती है कि इस मॉडर्न और लेटेस्ट कहानी से ये शिक्षा हमें देखने को मिलती है कि अकेले जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण साथ मिलकर आगे बढ़ना है। सबकी अपनी कमज़ोरी और ताकत होती है और एक दूसरे की मदद करके ही असली सफलता मिलती है। तो देखा आपने इस कहानी का कछुए और खरगोश की नई रेस की नई अपग्रेडेड न्यू वर्जन कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चलिए अब एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बेहद खूबसूरत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसे गाया है सुखविंदर और श्रेया घोषाल ने और इस गीत को हमने चुना है फिल्म संजू से।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम बालवाड़ी आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल पर। बच्चों, झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है, इसलिए जब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरिए मत, वो उतना ही आगे ज़रूर आएगा। जीवन में हो सकता है कभी हमें असफलता मिले या कभी हम निराश हो जाएं, तो उसमें घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता, वो बदलता ज़रूर है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी और बारिश के बाद धूप आते ही हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का अगला और आज का आखिरी सेगमेंट इस कार्यक्रम का प्रमुख व्यक्तित्व, जिसके तहत आज हम एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व आपके सामने लेकर आए हैं, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर के किस्से। बच्चों, कल यानी 29 अगस्त को हमने महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हमेशा की तरह इस बार भी राष्ट्रीय खेल दिवस हर्षोल्लास से देश भर में एक घंटा खेल के मैदान में थीम 2026 के साथ मनाया। दोस्तों, अपनी अद्भुत प्रतिभा, असाधारण खेल कौशल और समर्पण से पूरे विश्व को अचंभित करने वाले महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जीवन और खेल प्रतिभा देश की युवा पीढ़ी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, मेजर ध्यानचंद को उनकी बेहतरीन खेल शैली और गेंद पर अद्भुत नियंत्रण के कारण हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आइए जानते हैं चंद नाम पढ़ने का किस्सा। जी हाँ बच्चों, मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। वो दिन में सेना के काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे रात में चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। उनके समर्पण को देखकर उनके साथी खिलाड़ी उन्हें प्यार से चंद चंद कहने लगे और इस तरह वे ध्यान सिंह से ध्यान चंद बन गए। एक और किस्सा सुनाते हैं जिसमें उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की जांच की गई थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार हॉलैंड में मैच के दौरान ध्यानचंद का खेल देखकर वहां के खिलाड़ियों को शक हुआ कि उनकी हॉकी स्टिक में कोई चुंबक लगा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अधिकारियों ने उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर भी चेक किया था, लेकिन अंदर कुछ नहीं निकला। इसी तरह एक बार जापान में एक मैच के दौरान उनके स्टिक में गेंद चिपकी रहने पर ये अफवाह मच गई थी कि उनके स्टिक पर गोंद लगा है। साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। इस मैच में भी ध्यानचंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल दागे थे। उनकी इस प्रतिभा से जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि उसने ध्यानचंद को जर्मनी की नागरिकता और सेना में बड़े पद का भी ऑफर दिया, जिसे ध्यानचंद ने ये कहकर ठुकरा दिया कि भारत बिकाऊ नहीं है। हम सलाम करते हैं ऐसे महान खिलाड़ी को, उस हॉकी के जादूगर को, और आज इस मंच के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए एक जोशीला, एक जोश से भर देने वाला, एक बेहद सुंदर गीत आपको सुनवाते हैं सुखविंदर और सलीम मर्चेंट की आवाज़ में। फिल्म है चक दे इंडिया।

इसी गीत के साथ स्टूडियो की टिक टिक करती घड़ी की सुइयां मुझे कार्यक्रम समापन की ओर इशारा कर रही है, तो दीजिए अनुमति आपकी रेडियो दीदी संगीता सिखवाल को। नमस्कार।

बालवाड़ी अभी अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम श्रोताओं आकाशवाणी नागौर का। ये चिरमी चैनल है, शाम के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं RJ महावीर के साथ फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए राहत फतेह अली खान को फिल्म रेड में।

0: किधर है?
1: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
2: RBI कहता है
3: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

यह है फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश फिल्म ए जेंटलमैन से। आवाज़ है प्रिया और सिद्धार्थ की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे कानदास और साथियों के स्वर में ये लोक प्रस्तुति भजन के रूप में कार्यक्रम मार्टी के स्वर में। मार्टी के स्वर की अगली प्रस्तुति इस ब्रेक के बाद।
1: नमस्कार, संस्कार संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज के कलाकार थे कहन दास और साथी, और साथ में थे अनूप तिवाड़ी। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चरण है। शाम के 6 बजने को है, 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा किए। नशा मुक्त समाज के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन। राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चयन का काम अंतिम दौर में। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदान तैयारियों का जायजा लिया। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की उपस्थिति में ताशकंद में ये एमओयू हुए। दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री श्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य और प्रयासों के लिए श्री मोदी को ये सम्मान मिला है। उज्बेक राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश उन्नत साझेदारी के ढांचे के भीतर ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के संयोग पर खुशी जताते हुए वहां के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि भारत के युवाओं की स्वास्थ्य, खुशहाली और उज्ज्वल भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प है। उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों की सराहना करते हुए लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दे। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों के बढ़ चढ़कर भाग लेने पर खुशी जताते हुए कहा कि इसने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल का मंत्र एक बार फिर याद दिलाते हुए कहा कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देशवासी केवल मिट्टी के दिए खरीदे। उन्होंने कहा कि भारत का आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बने उत्पादों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश में इस बार भी लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर प्रदेश भर से आई महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम से देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री के सपने को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। नीट पीजी 2026 परीक्षा आज जयपुर के दो केंद्रों पर बिजली व्यवधान के चलते आयोजित नहीं हो सकी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर को दोबारा ये परीक्षा आयोजित करवाने की घोषणा की है। नए परीक्षा केंद्र के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से सूचित किया जाएगा। प्रभावित अभ्यर्थियों को संशोधित प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे। नीट पीजी 2026 परीक्षा आज देश भर के 1100 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई, जहां 2,65,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी। नीट पीजी के लिए राज्य में 12 जिलों में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में 309 नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 3 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद ही चुनाव मैदान की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। प्रदेश भर के 10,000 से ज्यादा वार्डों के लिए अब तक 13,000 से अधिक नामांकन भरे जा चुके हैं। इस बीच भाजपा और कांग्रेस से टिकट चाहने के इच्छुक दावेदार जी जान से अपने पक्ष में समर्थन के लिए जुटे हैं। अब तक दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार चयन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि कल दोपहर से पहले राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि इन नगरीय निकायों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। राज्य में 100% मतदान के प्रति जागरूकता के लिए चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत इन दिनों कई नवाचार किए जा रहे हैं। रंगोली, मांडना और कई प्रतियोगिताओं के साथ ही विभिन्न माध्यमों से नागरिकों को मतदान के कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बाड़मेर में कजली तीज को भी मतदान से जोड़ते हुए सत्तू के लड्डुओं के झांके के जरिए मतदान का संदेश दिया गया।
2: जिला प्रशासन की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं। इस बीच त्योहारी सीजन के चलते मिठाई के डिब्बों पर मतदाता जागरूकता संबंधी स्टिकर चिपकाकर आमजन को मतदान के जरिए लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है। वहीं आज कजली तीज के उपलक्ष्य में सत्तू के लड्डुओं की रंगोली बनाकर आमजन को मतदान का संदेश दिया गया। इसके अलावा स्वीप गतिविधियों के माध्यम से आमजन को लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: स्वीप गतिविधियों के तहत आज कई जगह मतदाता जागरूकता दौड़ रखी गई। श्रीगंगानगर में इंदिरा वाटिका से शुरू हुई दौड़ मुख्य मार्गों और बाजारों से होकर गुजरी। दौड़ के जरिए मेरा पहला वोट मेरी जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने दौसा में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और भयमुक्त तथा सुचारू चुनाव संपन्न कराने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
3: नॉमिनेशन फॉर्म जो दिए जा रहे थे आरओ के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर दौसा नगर पंचायत के द्वारा, वहाँ खुद जाके अवलोकन किया, चीजें जो है व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है, मेथोडिकल है और कई जगह से हमें ये शिकायतें मिली थी कि जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, वो सब जो इसके बाद जो कलेक्टर साहब एसपी साहब है इनसे हमने जो जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति है, पुलिस का प्रबंध है, मतदान दलों की जो व्यवस्था है, मतदान केंद्रों की जो व्यवस्था है और कहाँ पर जो है मतदान होगा, कहाँ मतगणना होगी, इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत सूचनाएं जो है प्राप्त की। अब मुझे लगता है कि यहाँ की तैयारी ठीक ठाक है और हम उम्मीद करते हैं कि जो मतदान वगैरह है और जो मतगणना है, चुनाव परिणाम वगैरह है, वहां तक स्थिति जो है कंट्रोल में रहेगी।
0: धौलपुर जिले के आंगई क्षेत्र के बिरजा गांव में आज सुबह पोखर में डूबने से चार लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के शिकार लोग हीरामन बाबा के दर्शन के लिए गए थे और नहाने के लिए पोखर में उतरे थे। मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मृतकों के शव निकलवा कर परिजनों को सौंपे। उधर उदयपुर के ओगणा में झाग गांव के पास आज दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में तीन लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया। केंद्रीय

और उज्बेकिस्तान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा किए, नशा मुक्त समाज के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन, राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चयन का काम अंतिम दौर में। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदान तैयारियों का जायजा लिया, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। उदयपुर में 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाराणा भूपाल स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण करने के बाद समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में उदयपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता, मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा के लिए समर्पण और बलिदान यहाँ की स्थापित परंपरा है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं और उपलब्धियों के लिए 69 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिला न्यायालय परिसर में एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर में रहने वाले शहीदों के परिवार के लोगों का सम्मान किया गया। सांस्कृतिक संध्या में चुनिंदा कलाकारों, आमंत्रित कवियों और अधिवक्ताओं की रंगारंग प्रस्तुतियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नारी शक्ति सम्मान उत्सव आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों को रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप 1100 रुपये तथा साड़ी के लिए 1000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की। इस अवसर पर उदयपुर जिले की 2394 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2394 सहायिका तथा 495 साथिन महिलाएं लाभान्वित हुईं। बीते दिनों राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एक दिन के प्रवास के दौरान ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी कैलाशपुरी पहुंचे। उन्होंने यहाँ भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने कैलाशपुरी स्थित मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल के पैनोरमा का अवलोकन किया। साथ ही बप्पा रावल की अश्वारूढ़ प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। आदिवासी अधिकार जन संगठन मोर्चा की ओर से जुलूस निकाला गया। बापू बाजार, डेली गेट, अश्विनी बाजार, हाथी पोल, चेतक सर्कल से होता हुआ ये जुलूस जनजातीय आयुक्त कार्यालय पहुंचा। जिले में श्रावण माह की दस्तक के साथ ही घरों और शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दी। कांवड़ियों ने विभिन्न तीर्थ स्थलों से पवित्र जल लाकर शिवजी का अभिषेक किया। सभी प्रमुख मंदिरों में रुद्राभिषेक और सहस्राभिषेक के कार्यक्रम रखे गए। इसी के साथ वन सोमवार पर विशेष श्रद्धा का सैलाब देखा गया। महिलाओं और शिव भक्तों ने घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। जिले में श्रावण मास में लगने वाले 5 सुखिया सोमवार के मेले इस बार गुलाब बाग में लगाए गए। इन मेलों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हरियाली अमावस्या पर फतेह सागर की पाल और सहेलियों की बाड़ी पर 2 दिवसीय परंपरागत मेला आयोजित किया गया। पहले दिन मेले में सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी रही, वहीं दूसरे दिन केवल महिलाओं को ही प्रवेश दिया गया। मेले में विभिन्न स्थानों पर करीब 400 स्टॉल्स लगाई गई। इनमें घरेलू सामान, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पदार्थ, कपड़े, सजावटी सामग्री और खिलौनों की स्टॉल्स शामिल थी। दोनों दिन फतेह सागर की पाल पर पुलिस बैंड और वेस्ट जोन के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिले में ईद मिलादुन नबी का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस की खुशी में मनाए जाने वाला ये पर्व 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर कई स्थानों से अलग अलग जुलूस निकाले गए। मुख्य जुलूस अंजुमन चौक से होते हुए ब्रह्मपोल स्थित मौलाना हजरत जाहिरुल हसन साहब की मजार पर पहुंचा,
जहां चादर की रस्म अदा की गई। जुलूस में शामिल होने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से मुस्लिम समुदाय के लोग मुखर्जी चौक और हाथीपोल चौराहे पर पहुंचकर वहां से

0: के जुलूस के साथ शामिल हुए। इस दौरान जुलूस मार्ग पर यातायात का प्रवेश निषेध रहा। जिले में रक्षाबंधन भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के घर पहुंचकर उनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांधे और उनकी समृद्धि तथा लंबी आयु की कामना की। केंद्रीय कारागृह में भी बंद कैदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधी। इसी के साथ उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान रे बीच न्यारा न्यारा हलकमाई 11 करार माथे दस्तखत करी जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान रो सबू चोसन मान मिलियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करया। नशा मुक्त समाज सारू लोगों आगे आवण री करी अरज। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सारू नामपाना भरण रो काले आखिरी दिन। राजनीतिक दला में उम्मीदवार चुनन रो काम आखिरी दौर में। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह मतदान तैयारियां रो जायजो लियो। निष्पक्ष और साफ गोई रे साथे चुनाव रा निर्देश दिया। समाचार साथ है मैं शंभु सिंह। अरबे समाचार विगतवार। भारत और उज्बेकिस्तान आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और रोकड़ संवाद, गहरी और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण समेत 11 हलकामाए कई करार माथे दस्तखत करिया। दोनों देश साल 2030 ताई द्विपक्षीय कारोबार ने $5 अरब ताई पुगावण रो लगस तयकरण माथे राजी भिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान रा राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोव री मौजूदगी माए ताशकंद माए OMOUVO दो दिन री यात्रा माथे उज्बेकिस्तान पुग्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान रा ठावा सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डरी नवाजी जियो। दोनों देशों रा बीच मदद ने मजबूत करण सारू महत्व काम और कोशिश सारू श्री मोदी ने ओ सम्मान मिलियो है। ओ विदेशी नेतावा ने दिया जाऊन वाला उज्बेकिस्तान रो ठावो सम्मान है। उज्बेक राष्ट्रपति रे साथे नुमाइंदा मंडल थर्री बतल रे दौरान आपरा भाषण माए प्रधानमंत्री श्री मोदी कहो के दोनों देश उन्नत साझेदारी रा ढांचा माए ठोस लगस तयकरण ने आगे बढ़ेला। श्री मोदी दोनों देशों रे बीच रणनीतिक साझेदारी री 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान रा स्वतंत्रता दिवस री 35वीं सालगिरह रा संयोग माथे खुशी जतावता 18 लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी।
2: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
1: इनु पहला श्री मोदी उज्बेकिस्तान में भारतीय दूतावास समुदाय रे साथ है बतल करी। वारो ताशकंद माए भारतीय रीत और संस्कृति रे साथ है शानदार स्वागत करी जो। दो देशों री यात्रा रे दौरान श्री मोदी उज्बेकिस्तान रे पछे किर्गिस्तान गणराज्य जायला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है के नशा मुक्त युवा फोर विकसित भारत अभियान आखा देश माए तेजियों आगे बढ़ रियो है। आज आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी में श्री मोदी ई बात माथे खुशी जताई के नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत फगत एक औपचारिकता नहीं है बल्कि भारत रा नौजवाना रा स्वास्थ्य खुशहाली और सुनहरा भविष्य सारू भेड़ो संकल्प है। वणा नशारे खिलाफ जाग जगावण और नशारी लतू जूझ रिया लोगों रे मदद सारू आगे आवण वाला लोगों री सराहना करता। लोगों नशा मुक्त भारत सारू असरदार नारा तैयार करण और नौजवान संगीतकाराओं इन तरह गीत बनावण ने कहो जो नशा मुक्त जीवन रो संदेश देवे। प्रधानमंत्री कहो के पीएम स्वनिधि योजना री मार्फत लाखों महिलाओं ने नवी ताकत मिली है। वणा कहो के देश भर री कोई 35 लाख महिलाओं ई योजनाओं जुड़ने आपरा कारोबार ने आगे बढ़ा रही है। श्री मोदी कहो के आज देश री बेटियां रा सपना री उड़ान धरती निकलने अंतरिक्ष ताई पूग रही है। वणा मिशन शक्ति सेट रो जिक्र करता कहो के इनरी मार्फत 108 देशों री 12,000 छात्रावां ने उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखण और नवाचार रा हलका माए आगे बढ़न रो मौको मिल रियो है। प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान में देशवासी

0: रे बढ़ चढ़ने हिस्सों लेवण मात से खुशी जतावता कहो कि इणु देशभक्ति री भावना ने और मजबूत करिया है। प्रधानमंत्री आवण वाला तिवारा माथे वोकल फॉर लोकल रो मंत्र एक कर फिरू याद दिरावता कहो कि इन रो मतलब फगत ओनी है कि देशवासी फगत माटी रादिया खरीदे वणा कहो कि इन रे लारे मोटी और गहरी निजर है। भारत ने आत्मनिर्भर बनावण रो मार्ग भारत माए बण्या उत्पादा माथे मान करणी बणेला।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने सुनन सारू प्रदेश में ए बारी लोगा माए घणो उमाव नजर आयो। न्यारी न्यारी ठोड़ा कार्यक्रम रा सीधा प्रसारण रा बंदोबस्त करी जा। प्रदेश भाजपा कान्यो मुख्यालय और जिला थर माते कार्यक्रम ने भेड़ा सुनी जा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपरा रहवास माते प्रदेश भरू आई महिलाओं रे साथ प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। ई दौरान मुख्यमंत्री कहो के कार्यक्रमो देश रा लोगा रा जीवन माए सकारात्मक बदलाव आयो है वणा प्रधानमंत्री कान्यो कार्यक्रम माए महिला सशक्तिकरण नशा मुक्त युवा समेत न्यारा न्यारा मुद्दा ने देश माए बदलाव रा कारण बताया। मुख्यमंत्री कहो के सरकार प्रधानमंत्री रा सपना ने धरा माते उतारण सारू वचनबद्ध है और महिलाओं रा सामाजिक और माली विकास सारू बरोबर काम कर रही है। नीट पीजी 2026 परीक्षा आज जयपुर रात दो केंद्र माथे बिजली री गड़बड़ी रे चालता नहीं वह सकी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज असर वाला उम्मीदवारा सारू 5 सितंबर ने दोबारा परीक्षा कराण रो ऐलान करियो है। नुआ परीक्षा केंद्र रा बारा माए परीक्षार्थियों ने अलग जानकारी दी जायला। आ परीक्षार्थियों ने संशोधित प्रवेश पत्री काढ़िया जायला। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इनरे साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और ई बारा माए फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रदेश रा 309 नगरीय निकाय चुनाव सारू काले नामपाना भरण रो आखिरी दिन है। 1 सितंबर ने नामपाना री जांच करी जायला। उम्मीदवार 3 सितंबर ताई आपरा नाम पाछा ले सकेला। इन रे पछे ही चुनाव मैदान री तस्वीर साफ वह सकेला। 4 सितंबर ने चुनाव चिन्ह बांटिया जायला। प्रदेश भर रा 10,245 वार्डा सारू अजे ताई 13,032 नामपाना भरिया जा चुक्या है। ई बीच भाजपा और कांग्रेस टिकट री आस वाला दावेदार जी जानू आपरा पगसमाए समर्थन सारू जुटिया है। अजे ताई दोनों ही पार्टियां उम्मीदवार बनावण ने लेर तस्वीर साफ नहीं करी है। फेरो ही मान्यो जा रियो है के काले दोपहरों पहला राजनीतिक दलाकानियों आपरा उम्मीदवारा ने चुनाव चिन्ह दे दिया जायला। ध्यान जोग है के आ नगरीय निकाय सारू दो दौर माए वोट पड़ेला। पहला चरण रा वोट 9 सितंबर ने वेला वठी 11 सितंबर ने दूजा चरण रा वोट पड़ेला। वोटां री गिनती 14 सितंबर ने वेला। अध्यक्ष रो चुनाव 21 सितंबर ने वेला। राज्य माए 100% वोट देवण सारू जाग जगाउण री स्वीप गतिविधियां रे तहत आज आ दिना कई नवाचार करिया जावे। रंगोली मांडना एर होना रे साथ ही न्यारा न्यारा तरीका लोगा ने वोट रा कर्तव्य प्रति जागरूक करिया जावे। बाड़मेर माए कजली तीज ने मतदान जोड़ता सत्तूरा लड्डू री झांकी री मार्फत वोट रो संदेश दिरिजियो।
2: जिला प्रशासन की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं। इस बीच त्योहारी सीजन के चलते मिठाई के डिब्बों पर मतदाता जागरूकता संबंधी स्टिकर चिपकाकर आमजन को मतदान के जरिए लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है। वहीं आज कजली तीज के उपलक्ष्य में सत्तू के लड्डुओं की रंगोली बनाकर आमजन को मतदान का संदेश दिया गया। इसके अलावा स्वीप गतिविधियों के माध्यम से आमजन को लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: स्वीप गतिविधियां रे तहत आज कई ठोड़ा मतदाता जागरूकता दौड़ रन फॉर यूनिटी राखी जी। श्री गंगानगर में इंदिरा वाटिकाओं सुरुवी दौड़ खास मार्गा और बाजारों वेता निकली। प्रदेश में स्वतंत्र निष्पक्ष और साफ गोई रसाते चुनाव कराउन सारू राज्य निर्वाचन आयोग बरोबर मॉनिटरिंग कर रियो है। निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह दोसा में बंदोबस्त रोज आयोजित लियो वणा कहो के मतदाताओं की सुविधा सारू जरूरी इंतजाम करीजा है और बिना डर रहे सुचारू चुनाव पूरा कराउन सारू खास सावचेती बरती जावे।
3: नॉमिनेशन फॉर्म जो दिए जा रहे थे आरओ के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर दौसा नगर परिषद के वहाँ खुद जाके अवलोकन किया, चीजें जो है व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है, मेथोडिकल है और कई जगह से हमें ये शिकायतें मिली थी कि जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो वो सब जो समस्याएं है वहाँ यहाँ नहीं थी। उसके बाद जो कलेक्टर साहब एसपी साहब है इनसे हमने जो जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति है, पुलिस का प्रबंध है, मतदान दलों की जो व्यवस्था है, मतदान केंद्रों की जो व्यवस्था है और कहाँ पर जो है मतदान होगा, कहाँ मतगणना होगी, इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत सूचनाएं जो है प्राप्त की। अब मुझे लगता है कि यहाँ की तैयारी ठीक ठाक है और हम उम्मीद करते हैं कि जो मतदान वगैरह है
0: धौलपुर जिला रा आंगई हलकारा बिरजा गांव में आज सवाना पोखर में डूब जावनो चार लोगों की मौत वेगी। पुलिस बतायो के हादसा रा शिकार लोग हीरामन बाबा रा दर्शन सारू आया हा और नावन सारू पोखर में उतर गया हा। मरण वाला में तीन महिला भेड़ी है। उठी ने उदयपुर ओगणा में झा गांव रेकने आज दो मोटरसाइकिल री आमी सामी री टक्कर में तीन लोगों की मौत वेगी और एक गेरो घायल वेगियो। केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल रा 88वां संस्करण में हिस्सो लियो। ओ कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस रे मौके ब्रिक्स री मदद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वियो। डॉक्टर मांडविया कहो के साइकिल चलावणो सेहत रे साथे प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या कम करण में मदद करे है। वणा नौजवानों रोज कम कम एक घंटा खेल और शारीरिक कसरत ने देवण री अरज करी। मैं अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरू सुन ले रहो। भारत और उज्बेकिस्तान रे बीच न्यारा न्यारा हल्का में 11 करार माथे दस्तखत करी जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान रो सब ऊंचो सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में आपरा विचार साझा करया। नशा मुक्त समाज सारू लोगों आगे आवण री करी अरज। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सारू नामपाना भरण रो काले आखिरी दिन। राजनीतिक दला में उम्मीदवार चुनन रो काम आखिरी दौर में। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह मतदान तैयारियां रो जायजो लियो। निष्पक्ष और साफ कोई रे साथे चुनाव रा निर्देश दिया। ने इन रे साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यू मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

खेतीबाड़ी सुनना सगला भया ने, भया ने, टावरा ने, राधेश्याम भाई रा घना हेतु और कोडू राम राम। देखो कि भैया लारला कई दिन अपा के अटे मानसून की बेरुखी भिंडुड़ी है और मानसून की बेरुखी बनने को असर है कि अपा की फसल है जो कि लगातार उत्पादन कम की गुंजाइश बन रही है। कि गंवार की फसल बात करा कई बीमारियां उनकी गुंजाइश हो रही है। मूंग की फसल जो की अब फाल मत आ रही है, बी को फाल झड़न की गुंजाइश बन गई। बाजरी में हिट्टो है जो को निकलने की टेम आ रही है, तो हिट्टा निकल नहीं रहा। तो हवा में नमी कम होनी, जमीन की धरती में नमी कम होने की वजह उत्पादन निश्चित रूप में कम होने की गुंजाइश बने। पर मौसम महकमे में एडी भी खबर मिले देखो कि प्रकृति रो रूप कणा की रूप में बदल जावे क्या कौन सका। और एडी उम्मीद लगे कि 3-4 तारीख के आसपास आपा की अटे भी कई ठोड़ बिर खाने की गुंजाइश बतावे, तो आपा उम्मीद रे साथे आगे बढ़ा। पर प्रकृति को रूप है वो कई बार की रूप में बदल जावे आपा क्या कौन सा। तो प्रकृति रे मुकाबलो करने वास्ते मिनक है वो आप हौसलो और हिम्मत हमेशा रखिया करे। और किसान भाई तो ऐडा है कि भाई आपके हौसले और हिम्मत के साथ कदी समझो तो करे भी कोनी। तो

0: अगर आप हौसले के साथ है, हिम्मत के साथ है, नई तकनीक के साथ है, और अगर काम करने की आपा की लगन हुए तो कि नए तरीकों काम करा तो प्रकृति के प्रकोप को असर भी कम हो सके और आपारो जो को आजीविका है बा ठीक ढंग चल सके। एडा ही एक व्यवसाय है खेती के साथ साथ जो पशुपालन है, डेयरी उत्पादन है या दूसरा काम वे तो कराइया, पर एक काम एडो है जके में बहुत कम खर्चो लगे और मेहनत भी बहुत कम पड़े, वो है एपिकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन एक एडो व्यवसाय है जो को कम लागत में और थोड़े से भगत में थोड़ी सी प्रयास हुआ आप भी ने फायदो ले सका। जटे भी आपारो खेत बैडो है, चाहे चौमासे रो खेत हो, चाहे हियाले की फसल हुआ, वो भी खेत रे आस पास में आप 10 बक्सों एक मधुमक्खी पालन को काम शुरू कर सका। दस में यूं तो मधुमक्खी पालन शुरू करियो पहली आपने ध्यान रखनो कि जका खेती में एक में का जानकार मैंने कह बहु आप इस संबंध में 5-10 दिन या 15 दिन को एक ट्रेनिंग हुए व प्रशिक्षण ले लेना चाहिए। भी ट्रेनिंग लिया पे आपने थोड़ो काम करने में सुविधा रहे और ट्रेनिंग लीड अवेयर बटू एक सर्टिफिकेट मिले भी के आधार पर आप के खेत में अगर मधुमक्खी पालन को व्यवसाय शुरू करा तो आपने बैंक लोन भी मिल सके और लोन भी जितो आप काम शुरू करा भी 50,000 ले 5 लाख तक लोन आपने मिल सके। तो मधुमक्खी पालन को आप प्रशिक्षण लेवाना और आप स्तर पर शुरू करा, जो 10 बक्सा में शुरू कर दिया तो मान्य करे भाई 7 बक्सा में अगर मधुमक्खियों एक बार पालन शुरू कर दिया 3 बांक वास्ते रिजर्व सुरक्षित रखा वे आगू आगे जो 3 पाके भी आगे बढ़ता रहे फिर नया 3 में और होता रहे एक हिसाब आगे बढ़ता रहे। तो मधुमक्खी पालन में एडो फायदो है कि एक मधुमक्खी के छाते में अंदाज माने कि भाई 2 लेर 4 किलो तक भी में 1 महीने में शहद प्राप्त हो सके। अगर आप 10 छाता की बात करें तो महीने में अगर 40 किलो शहद हो जावे तो 40 किलो शहद का मतलब है कि 400-500 रुपए किलो लगभग 15-20 हजार रुपए की इनकम भी मधुमक्खियों आप के हो सके। और खाली शहद की बात को नहीं है, मधुमक्खी पालन करना तो देखो सबू बड़ो फायदो तो ओ है कि मधुमक्खियों को पालन करना जन बे मधुमक्खियां उड़ परीर आप की जगह फसल बैठी है भी फसल की जगह फूल है बैंक ऊपर बे मंडराई बहु मकरंद बहु जो को रस है वो चूसी वो चूसने के साथ साथ वो परागण को काम भी करे। मधुमक्खियां जितनी ज्यादा हुई भी आपने को डर नहीं है भी आपको फूलों को रस चूली रान फाल कम लागे, जितनी मधुमक्खियां हुई भी तो ही आपके फाल ज्यादा लागे उत्पादन लंगे टंगे 10-15% अगर मधुमक्खी पालन करा तो आपको उत्पादन भी बढ़ जावे। और मेरे साथ साथ शहद तो मिले यार, शहद के साथ साथ जो को मोम प्राप्त हुए वो मोम भी कई प्रकार की दवाइयां में काम आवे और एक भी के साथ एक रॉयल जेली और या करे जिसकी हरेक साथ में बा रॉयल जेली भी कई प्रकार का आजकल कॉस्मेटिक पदार्थ वे जका सौंदर्य प्रसाधन है भी बनने में काम आया करे। और भी मैं आप देखा कि प्रकृति के साथ भी आप बड़ो न्याय करा, अगर आप मधुमक्खी पालन करा तो प्रकृति में ऐडी चीज है कि जैव विविधता या पारिस्थितिक संतुलन है भी में भी मधुमक्खी पालन है जो को बहुत मदद करे। तो आपने व्यवसाय की तरफ ध्यान देना चाहिए लेकिन सावधानी यही रखनी चाहिए कि जगह को सही चुनाव करा और आप मौसम अगर प्रतिकूल हो जावे, अगर भी टाइम पर मधुमक्खियों वास्ते कोई भी चीज खाउन पीन नहीं मिल रही है तो आपने शक्कर को घोल बना रही बने क्विन टाइम थी आपने जीवती रखनी है। इस चीज की आप सावचेती राख परी मधुमक्खी पालन को व्यवसाय शुरू करा और कम लागत में थोड़े टाइम में आप अधिक फायदो ले सका। और अब देखो भैया थोड़ा सोख ले एक ब्रेक।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट, इन्होंने अकल लगाई रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: हाँ तो भैया देखो कि आप कामरी बात सुनी और अब आपने उड़ी क्रिया करे भाई आप कई बार गीत भजन री तो आज एक आपने बहुत ही चौखो और मीठो भजन सुनावा और अपा का पुराना बहुत अच्छा राजस्थान का जाना माना कलाकार रामचंद्र जी गोयल बारो गायड़ो एक लोक भजन थे तो अरोगोनी मदन गोपाल।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख ले।

0: ना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
0: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: हाँ तो देखो भैया, रामचंद्र गोयल और हमारे साथ एनोगाडो लोक भजन बहुत ही मीठी आवाज में आपने दाए आयो बोला। तो देखो भैया, गे आपा गीत भजन भी सुन लियो और अपन उड़ी क्रिया करे भैया री बात भैया पूर्ति करा। तो आपा भैया के साथ साथ कई बार चौपाल माते विशेषज्ञ ने बुलाया करा और बारी जगह जानकारी बांको अनुभव बांको ज्ञान अपर एक वास्ते घणो उपयोग दिया करे बा बात आपती पूर्ति क्रिया करा। तो इन्हीं कड़ी में आज डॉक्टर शंकर राम सियाग आपा की चौपालू जुड़िया बे जगह जानकारी बताई बे आपती पूर्ति करा। तो सुनो आ हत आपरो बहुत बहुत स्वागत है सर। राम राम सर।
3: हाँ राम राम सर। राम राम सर।
2: शंकर जी, मैं आपको बिना किसी के सबूं पहली तो आपको चूंकि अबार के मौसम में खास तौर देखो कि कई दिन हूँ अटे मानसून की बेरुख और अटे किसाना के मानसून की बेरुखी की वजह हूँ देखा कि सुबह सुबह की ठंडी हवा चले और
3: चले दो दिन हवा भी उगट चले था।
2: हाँ, तो ये हवा की वजह कई किसान भाया की यान की शिकायत आई एक भी मूंग की फसल है जो अठीने तो पानी की कमी है अठीने भी इनकी बीमारी है। तो आपने कहा लगे की ये हवारों की असर हो सके की या यू ही किसान ने कोई मन में बे मिलिया बैठे।
3: देखो राजश्याम जी, आपने मैं बतानी चाहूँ अबार जकी स्थिति नहीं आपने जिले की फसल जो विशेष तौर मैं एक दो इस साल पूरी साल ही बरसात हुई तो नेप की हुई मतलब कम हुई अबार जो की विशेष कमी है फसल में नमी की बहुत कमी है और दो दिन हवा भी उगट चाल है। तो एक तो किसान भाई वही निवेदन है कि अगर कोई भी खेत में कीट या रोग है तो जगह खेत में पानी की तीस आयोडी हुए जो मैं स्प्रे नहीं करे टाले। हाँ स्प्रे विशेष तौर कोई तरीके को नहीं करे क्योंकि तो पानी कमी हैवी केमिकल कोई तो फसल समय पूर्व पागी तो फायदे के बजाय नुकसान भी हो सके कीट मर सके लेकिन फायदे नहीं हुए कोई फायदा नहीं। निवेदन है भारत तो किसान भाइयों की आपसी विशेषज्ञ की सलाह देख रही खेत में जार फोनू बात कर आपने लगे कि हाँ नमी पर्याप्त है तो ही स्प्रे करावाता कीट रोग नियंत्रण की कोशिश की स्थिति में नहीं करनी।
2: तो देखो कि यह तो प्रकृति को प्रकोप है अपा के कौन सका अभी मान लो संकट चल है लगभग अगेती मूंगा की फसल है तो बतो 60-70 दिन की हूं लागी और भी फाल भी आऊ लागू और पछेती जगह किसान भाई है बे में कई गंवार की फसल है तो अगेती फसल में आपने कहीं लगे कि भाई अब बरसात अगर 5-4 दिन में हो जावे तो भी मैं की फसल में उत्पादन में फर्क पड़ सके कि अब कोई ज्यादा फर्क होने।
3: बिल्कुल बिल्कुल पड़ सके अगर बरसात तो कई बार साहब आप देखा मूंग की फसल आयोडी वेर खेत में खड़ी रहे बढ़िया बरसात हुई नहीं उठरी तो फ्लोरिंग वेर बढ़िया जत्ती फड़ी आयोडी बत्ती और आज तो फसल पैडिया में तो जरता ही नहीं उका जुड़ी है। हार्वेस्टिंग क्रिया में खड़ी फसल में पूरी संभावना है कि नुकसान कम हुए फायदो ज्यादा है अगर बरसात हुए तो और के बाद में कोई विशेषज्ञ की सलाह आगे कदम उठाना और पचेती फसल में जट नमी पर्याप्त है कीट रोग की है संभावना बट अधिसूचित मात्रा अनुसार लिमिट में ही कीटनाशक और फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार किसान भाई प्रयोग करे।
2: आपकी मर्जी नहीं करे अगर ज्यादा कटे जरूरत में तो जगह विशेषज्ञ है खेती में एक जरूर है गाँव में भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है सब जगह है तो मैंने पूछ रही आप करे वो काम
3: पूछ रही सलाह करे। और मैं तो आपने बताऊं सैकड़ों व्हाट्सएप फोटो वगैरह आवे किसान का फोन भी आवे रात का कई बार डेढ़ भजन तक भी मैं दुआया लिखू सर और आई है कि किसान भाई कई बार कहीं रहते कि साहब यूं लट मरे को नहीं या मात्र मरे को नहीं दवाई थोड़ी ज्यादा नहीं जरूरत है जी काम आए मात्रा अगर 1 लीटर पानी में आधा ML की तो आधा ML काम कर जी बती राड़ो तो फसल ने नुकसान है और पैसा को नुकसान है कीट तो वादे में मर जी।
2: तो अब तो बात इनकी होगी अब शंकर जी आप बताओ कि भाई पछेती गंवार की फसल है भी मैं हाल तक ज्यादा इतिस भी कोनीर बाय भी माल गुंजाइस भी तो गंवार की फसल में अभी बीमारी तो है कौन ज्यादा लाग नहीं रही है कई जगह
3: अगेती में आई साहब अगेती में रूट रोड की ही स्टेम रोड की ही और ब्लाइट की भी आई लेकिन अब पच्चे को ज्यादा है कौन और फिर भी लागे ब्लाइट है या विल्ट को है तो बिना फपून सिस्टमेटिक फपून नाशक वो आराम ड्रेसिंग स्प्रे कराओ फपून नाशक ज्यादा कोई पानी में नमी वगैरह स्ट्रेस को ना हो इनका सिम्टम प्रयोग कर सके अगर कोई रोग है गुवार में तो गुवार तो अगर राजस्थान जी आपने बताऊं जिले में इनकी फसल ही अगेती जबकि लोगों को जीव सो रोग भाई अबगाड़े जाने की कम पानी में भुगने की कौन है लेकिन जबकि 10 दिन
2: फसल है बरसात तो करानी हारे को थोड़ा गुणो निनाण पाली करे तो की थोड़ा गुणो नमी ऊपर उनकी गुंजाइश रहे
3: बिल्कुल बिल्कुल राधेश्याम जी पछेती फसल है बरसात की कमी तो एक तो काम करे निराई गुड़ाई अवश्य करे
2: अच्छा
3: पौधा की संख्या सीमित कर लिए, कचरो राड़े ऊपर एक फायदा है, ऊपरली अगर माटी टूट जाए ना निराई गुड़ाई हूँ तो नेचुरली ऊपरली मिट्टी को संपर्क उचित नेचुरल मल्च को काम करे है, परत अवरोध को काम करे है, पानी भी कम अवशोषित हुए और काफी दिन तक नमी संचित रहेगी, तो निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है पचेती फसला में।

0: बिल्कुल ठीक भाई, निराई गुड़ाई आप कई दिन, दो चार दिन, पांच दिन फसला ना की थोड़ा जीवनदान मतलब नमी और
1: आराम हो, दस दिन काट जी साहब। मैं बताऊं कई बार अपन देखा नहीं कचरो नहीं उगन जे ऊपरली भूप अपनी तोड़ दिए जरा फसल 10 दिन तक आराम हो सर्वाइव कर दिए। जब तक परमानेंट विल्टिंग नहीं आई नहीं फसल में, जब तक अगर बरसात हुई तो फसल पास एक और रुझी पचेती है बार हाल टाइम है तो
0: बिल्कुल खरपतवार नहीं हुए तो वो बहुत बढ़िया बात है भी मैं
1: बहुत बढ़िया है। और पौधा की संख्या भी थोड़ी सीमित करे तो ज्यादा नहीं रहे।
0: हाँ वो ठीक बात है ताकि भी पानी की पूर्ति बन हो
1: जाए, पोषक तत्व कंपटीशन कौन रहे, पानी को कंपटीशन कौन रहे, तो 5 दिन चाले जो 10 दिन काम चाल जी। अच्छा भगवान बसे लो उम्मीद तो है।
0: डॉक्टर साहब एक आप पूछनी चाहूँ सियाग साहब की, अभी एक दिन अखबार में पढ़ी और आई भाई एक खबर पड़ी क्रॉप कटिंग के नाम खबर चले, आ क्रॉप कटिंग कहीं है, इनमें किसाना ने कहीं कोई सावचेती राखनी चीज है या किसानों की काम है कहीं?
1: राजश्याम जी आपको निवेदन करूँ, क्रॉप कटिंग दो चीजों को निर्धारण हुआ करे, एक तो देश को खाद्यान्न को उत्पादन निर्धारित हुआ।
0: अच्छा,
1: लेकिन देश की नीतियां बने खाद्यान्न संबंधित कतो इम्पोर्ट करना है कतो पैदा हुई एस्टिमेटेड अनुमानित उपज का आकलन है। दूसरो आजकल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना माननीय मोदी जी की बहुत बहुत बढ़िया योजना शुरू करी है। एक मायने किसान भाई वही निवेदन है कि फसल कटे प्रयोग जो को प्राथमिक कार्यकर्ता करे बिल्कुल सहयोग करे, बीमे कोई तरीके का अनावश्यक छेड़खानी नहीं करे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि छेड़के बार नादानी में जान कौन रखे पशु खा जाए या छेड़खानी कर दिए कहीं का परिणाम सही गुना हो, दो घाटा, एक तो देश को खाद्यान्न को निर्धारण भी कौन हुए और दूसरो प्रयोग भी प्रभावित हुई तो बिने वो प्रभावित की श्रेणी में आजीर कंपनी भी नपत बिल्कुल फायदों कौन मिले कंपनिया ने मौको मिल जाए प्रयोग शेड्यूल है। तो किसान भाई जबकि निर्देश जो है वो प्राथमिक कार्यकर्ता किसान ने सुझाव जो है उनको पालन करे विशेष तौर।
0: तो भाई क्रॉप कटिंग में आपने कहना मतलब है क्रॉप कटिंग वो निर्धारित हुआ की फसलों की तो उत्पादन हो रही है यार, अगर मान लो बीमो भी मिली तो क्रॉप कटिंग के आधार पर ही मिली आपने कहना को मतलब
1: आधार पर मिली दोनों ही चीजें है सर।
0: ठीक बात, तो आप अभी कोई प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करें, आप सरकार को और कंपनी सहयोग करें तो बहुत बहुत बढ़िया बात। और दूसरी अब देखो मौसम महकमे भी शंकर जी खबर मिले है की भाई आने टाइम में 3-4 तारीख तक अपने कई बरसात उनकी गुंजाइश भी छोटी मोटी बतावे है, तो अब की बार या तो अपने बात करा भारतीय विक्रम संवत तो तब देखो बादवो लगभग लागू है तो 10 एक
1: है,
0: तो अभी की बरसात में अपने जकी किसान भाई है सियाली जकी फसल है भाई, ये फसल में अगर थोड़ी बहुत कमजोरी भी रह जावे तो जकी सियाला में फसल वाई रबी की फसल भी फसल वास्ते अपने अबारू कहीं हावचेती राखनी चाहिए जकी कमो कम बा फसल तो बढ़िया हुआ आगे अगर थोड़ी सिंचाई की सुविधा ठीक ठाक हुए
1: भाई जका किसान फसल पड़ी चौमा आएगी है तो बिने समय पर समय चारों भेड़ो करे किसान भाई आपको अगले के लिए जून सितंबर में बरसात हुई ना पर रबी की बुआई के लिए वरदान साबित करी साहब। और रबी में जरूर अगर किसान भाई रबी की फसल बो बारानी भी भावे कही तो बा खरीफ की पूर्ति कर दी किसान के ठीक वास्ते बिने एक तो टाइम पर निराई जुताई करनी जरूरी है ताकि जून बरसात हुए कोई खेत भीड़ो पड़ी हुई पड़ती पड़ी अभी मैं जुताई कर दिया बार बढ़िया मिट्टी पटना हड़ू या तय हूँ तो जून बरसात हुई भी मैं नमी संरक्षित हूँ जी क्यों बरसात होनी करनी तो भगवान के हाथ है। लेकिन आप अगली फसल वास्ते भी किसान 15-20 बीघा खेत छोड़े के भाई जैसे लाली खाली बेची वहाँ पपाओ तो वहाँ खेता ने तैयार रखे
0: तो इनमें अपा के जकी तैयारी है एक सब बड़ी बात आप बता रही है किसान भाई जकी रबी की फसल बब है और वेरा टू बेलू बब है सीमस तो देखो बरसात हो जाए तो अपा चिणा तारा मेरा बढ़िया बात है लेकिन इनमें भी जकी अपा के खाद है विशेष तौर देसी खाद की बात करें तो ये खाद को इनमें कितों की उपयोगिता रहे इनमें कितों की मात्रा को ध्यान रखना चाहिए?
1: आपने एक चीज बताऊं साहब किसान भाई हर 5-7 साल हो जाएगा केमिकल खाद बहुत काम मिली है अब समय जैविक खाद ही काम में लेने भी एक तो जबकि जल धारण क्षमता वही बा बढ़ी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ी जमीन में नेचुरल जबकि कार्बन है भाई की मात्रा बढ़ी और जका 17 आवश्यक पोषक तत्व है पे भी गोबर की और देसी खाद हुई पूर्ति करी
0: भाई जमीन निरोगी तो, और फसल निरोगी आप क्यों मतलब देसी खाद हुई रही?
1: हाँ देसी खाद हुई रही तो वो बीघे में कम कम एक टोली बीघे के हिसाब हो खाद वो जरूर डाले गिलूड़ो गौशाला को खाद मोल जी राज जी और राज जी आगे जुताई की टाइम।
0: एक आपने अंतिम प्रश्न पूछूं शंकर जी आए कि भाई खाद नाकण को देसी जगह कंपोस्ट खाद है आप एक सेकंड में मिनट में बताओ कि तैयार करने को तरीको कहीं है ताकि किसान भाई ज्यादा फायदा मिल
1: सके? राजश्याम जी एक बहुत ही बढ़िया आप किसान खेत में बात पूछो 12 फुट लंबो 5 फुट चौड़ो और 3 फुट गहरो खाई करिए किसान आपकी पशुओं की संख्या अनुसार और बी के मायने जितो भी पशु बिचावन है पशु की गोबर है गोमूत्र है या कोई पेड़ पौधा डंटल है जगह, या कई बार अपन देखे गुदी चारों चारा गुदी हुए बा है तो सब तरीके की जगह नहीं बा अभी खाडे में राल बोरे। अच्छा घर में खोड़ियों का जो है छाछ है, बचोड़ी सब्जी का डंटल है या बासी सब्जी है, बचोड़ी रुचे है और जानवर नहीं खाने है आस पास में, तो वो भी खाडे में राल बोरे तो बा खाद है जगह बहुत ही बढ़िया कम्पोस्ट बढ़े। इनमें 3 महीने लागे,
0: अच्छा
1: 3 महीने में खाडो भरे जी राजश्याम जी, तो भी के बाद भी खाडे ने ऊपर बढ़िया रेत जमाई हल्की परत बना बढ़िया खून जमाए जी हवा फ्री कर जी और 3 महीने वास्ते पड़ी रखे। एक वास्ते आग जोड़े एक एन कोई 12 फुट लंबो 5 फुट चौड़ो और 3 फुट गहरी और खाई खोद दिए तो बाबी 3 महीने में धीरे धीरे बरीजे जैसे पहले खाद तैयार हुई और डीएपी हुई कई गुना ज्यादा खाद तैयार हुई थी। सब किसान ने थोड़ी सावधानी रखे तो एक तो मोदी जी को जो स्वच्छ भारत मिशन को सपनों है अभी में भी क्योंकि गंदगी अपन था कि जैव उत्पाद भी फैले है मन पड़े जाते की चीज राल जी कर फ्रूट राल जी और राल जी बस सब चीज भी कंपोस्ट में राल बोरे तो सफाई भी रही आसपास में स्वच्छ भी रही स्वस्थ भी रही और बढ़िया जैविक कंपोस्ट खाद तैयार हुई किसान के लिए बहुत बढ़िया उत्पादन हुए।
0: बहुत बढ़िया। तो शंकर जी आप रखो मतलब की अकुलटी की बजाय आप अगर खाडे में खाद ने कंपोस्ट
1: खाडे में खाद
0: कम करे
1: हजारों फायदा आयु खरपतवार भी कौन खरपतवार का जगह बीज है भी खत्म हो जाए दीमक भी कौन लागे खाद खाते खेत में दीमक लागे अभी भी सुरक्षा है तो कीट भी बचाओ।
0: तो बहुत बढ़िया शंकर जी आप चौपाल जुड़िया और भयन चौकी जानकारी दी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
1: राम राम सर।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: हाँ तो देखो भैया, शंकर राम बैज को अनुभव बैज की जानकारी खेती में सावधानियां और भी साथ साथ या बार क्रॉप कटिंग या फसल बीमा की जितनी जानकारी दी बाबी आप वास्ते घनी उपयोगी रही, तो ये जानकारी आपने बड़ो फायदो मिलेला। और अब तकरणी हताई करण को तो घणो जीव तूटे, बट अब घड़ी कने देखा तो आज रो तेवड़ो टेम हो रियो पूरो। तंगरा दिशा भाई दी रोस्टिक करा। राम राम।

खेती बाड़ी अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए, ICC वीमेंस T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में भारत और थाईलैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है।

هي

कानों तक बाल कटेंगे, पाउडर से काल सजेंगे, अच्छी खासी सूरत का रखा ये हाल बनेंगे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: न जाने क्यों ऐसा लगता है कहीं से यादों की बदलियां उमड़ घुमड़ आए तो शायद थोड़ी सी राहत मिले।
0: क्या बात कही आपने मनीषा जी, स्मृतियों के बादल जब आते हैं तो बादलों का आगमन बारिश हो ना हो छाया तो लेकर के आता है।
1: जी हाँ,
0: और इस छाया में जो ठंडक मिलने वाली है, उस ठंडक से जिनकी याद हमें आएगी, उसकी झलक इस गीत से
1: मिलेगी। हमें लगता है हमारे श्रोता जरूर इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि आज की विविधा में हम किन कलाकारों का स्मरण कर रहे हैं।

0: मेला फिल्म के इस गीत की झलक से तो बहुत से हमारे सुधी श्रोताओं ने जान लिया है, पहचान लिया है बात किसकी होने वाली है। फिल्म जगत के महान संगीतकार नौशाद अली साहब का स्मृति दिवस है 5 मई।
1: तो श्रोताओं, आज आप समझ गए कि विविधा बहुत ही सुरीली होने वाली है, क्योंकि नाम ही सबसे पहले जो है वो महान संगीतकार नौशाद साहब का है, और उनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं को हम आज सुनवाने वाले हैं। जयंत जी,
0: जी मनीषा जी, नौशाद अली साहब के बारे में अपने श्रोताओं को, बहुत से श्रोता जानते भी होंगे हमारे कार्यक्रमों के जरिए, ये जानकारी कई बार हमने उन्हें दी है,
1: जी जी जी
0: आज फिर उसे दोहराते हैं कि लखनऊ में उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1919 को।
1: जी हाँ।
0: अब लखनऊ शहर के बारे में क्या कहें,
1: तहजीब का शहर है
0: जी, और उस शहर में जिनका जन्म हुआ हो, लालन पालन हुआ हो, उस शख्सियत के बारे में क्या कहे कि वो तहजीब तो उनमें अपने आप ही उतर आती है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। और नौशाद अली साहब के बारे में एक बात तो सभी जो सिने संगीत प्रेमी हैं और जिन्हें शास्त्रीय संगीत में भी बहुत रुचि है, वो जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत का बहुत सुंदर प्रयोग राग रागिनियों का नौशाद साहब ने अपने संगीत में किया। इसके अलावा लोक गीतों का भी बहुत सुंदर
0: बहुत
1: प्रयोग,
0: अच्छी तरह से प्रयोग उन्होंने
1: जी,
0: किया।
1: जी
0: जी जी
1: और इसके अलावा नौशाद साहब के बारे में और भी कुछ जानकारी जयंत जी
0: जी बचपन में
1: उनमें
0: बताया जाता है कि वो अपने लखनऊ के पास बाराबंकी जो शहर है वहाँ कव्वालियों के कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वो जो भी संगीत के जलसे होते थे उसमें ये एक श्रोता के रूप में शरीक हुआ करते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे, तो अपने आप जो है उनके संगीत के

0: संस्कार उन पर होते चले
1: जी
0: गए।
1: हाँ, और नौशाद साहब का ये जो संगीत का प्रेम है, ये फिर बाद में हमें पता चलता है जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं और उनकी सुपरहिट फिल्में आनी शुरू हो जाती हैं। उनकी शुरुआत होती है 1940 में।
0: प्रेम नगर
1: जी
0: फिल्म का नाम था और इस फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई। हालांकि जो गाने सबसे पहले हिट हुए वो 1944 की फिल्म के गाने थे रतन।
1: जी हाँ, और फिल्म रतन से ही फिल्म इंडस्ट्री को एक जगमगाता हुआ रत्न मिला, नौशाद अली। श्रोताओ, नौशाद साहब को पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया और हम आज हमारे इस कार्यक्रम में उनकी एक खास रिकॉर्डिंग के कुछ संपादित अंश आपको सुनवा कर सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनाया जाए। पहले जयंत जी,
0: जी नौशाद साहब से बातचीत की है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने शायर और हमारे सेवानिवृत्त उद्घोषक अहमद वसी साहब ने।
2: याद है अब तक वो बचपन का जमाना, याद है अब तक अधूरा सा फसाना याद है। यानी मैं 10 बरस का था तकरीबन, उस वक्त से ये म्यूजिक का, संगीत का, मौसीकी का शौक कैसे पैदा हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से जिनको अताई कहते हैं पेशावर हजरात, वो अताई का मतलब समझते हैं कि न जानने वाला या कूढ़, एक जबान में कहा जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ अताई का मतलब ये कि जो खुदा की तरफ से अता हुई हो चीज। तो मेरे घर में माहौल जो था वो सब सूफी कस्म के हजरात थे। हमारे वालिद, दादा और दादी, नानी, सब इन्हें वो पुराने ख्यालात के, जिसको मैं अच्छा समझता हूँ पुराने ख्यालात, चूंकि पुरानी राहों से नई राहें फूटती हैं, तो मैं उनकी बातों को आज तक याद रखता हूँ। बहरहाल मेरे घर वाले मुखालिफ थे मौसीकी की तरफ, जो मेरा रुझान था, क्यों था ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन एक बात जो काबिल जिक्र है, हाजी बारस अली साहब बाराबंकी के आगे यूपी में एक जगह है जिसका नाम देवा शरीफ, वहाँ हाजी बारस अली साहब की दरगाह है और हर साल वहाँ कार्तिक के महीने में उर्स होता है और बहुत बड़ा उर्स होता है, 10 दिन का वो उर्स होता है। तो लखनऊ से लोग अपना अपना तंबू, अपनी अपनी कनातें लेके जाया करते थे, वहाँ मैदान में डाल के रहते थे 10 दिन तक, और थिएटर कंपनी भी वहाँ आती थी। तो हम भी मामू के साथ जाया करते थे, तो हम भी छोटे थे मेरे ख्याल से 10 साल के, तो उनके साथ हम भी जाया करते थे। तो सब मेले में जो फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं उनमें एक बांसुरी वाला आता था, वो बांसुरी बजाया करता था, बेचता था बांसुरी, और वो बांसुरी उसकी हमको इतनी अच्छी लगती थी कि मैं नहीं जानता था कि ये कौन सा राग बजा रहा है, लेकिन हमको बहुत ही अच्छी लगती थी उसकी बांसुरी, और हम फुटपाथ पर जाके उकड़ू बैठे हुए उसकी बांसुरी सुना करते थे। एक नूरानी दाढ़ी थी, पगड़ी बांधे रहता था, काली वास्कोट, शरई पैजामा, उसकी जहाँ बांसुरी की आवाज़ में सुनूं वो अपने कनात में से, तंबू में से भागूं मैं, और खाना पीना कुछ सब भूल जाऊं मैं, बैठा हुआ उसके दुकान के सामने फुटपाथ पर सुना करता था।

तो साहब दरगाह शरीफ पर बड़े अच्छे अच्छे कव्वाल आते थे, बड़े अच्छे अच्छे गज़ल के गायक आते थे। एक बाबा नसीर खां आया करते थे, बड़े अच्छे गायक थे वो, और वो ख़ास तौर से गज़ल गाते थे, और उनकी गज़ल बड़ी मशहूर थी जो कि बच्चा बच्चा उसको दोहराता था। छुटे असीर तो बदला हुआ ज़माना था, न फूल थे न चमन था न आशियाना था, हमारी कैद व कफ़स को बस एक साल हुआ, यही बाहर के दिन थे यही ज़माना था। तुझे मैं बागवा क्या क्या निशान बतलाऊं, यहीं कहीं पे हमारा भी आशियाना था। इस कसम की वो गज़ल थी, किसकी कही हुई थी या मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन बाबा नसीर खां ये गज़ल ऐसे गाते थे, इस तरह गाते थे कि लोग वाह वाह के नारे लगते थे और झूम झूम जाते थे लोग। बहरहाल वो बांसुरी ऐसी जहन में गूंजी कि वहाँ से हमको मौसीकी का शौक़ शुरू हुआ, वहाँ से मौसीकी की इब्तिदा होती है। धीरे धीरे कुछ उम्र बढ़ती गई, एक दो साल और गुजरे, अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरुस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे। गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के